0: skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: फ्राइडे 21st ऑफ अगस्त और आज का टेम्परेचर जो अभी आप फील कर रहे हैं अराउंड 15 डिग्रीज, साथ में सनसेट एट 5:49 PM, मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट 8 डिग्रीज तक, और साथ में वेदर जनरली फोरकास्ट किया गया है टू बी फाइन.

0: क्योरा बुला सलाम नमस्ते सत्रीकाल, मैं हूँ अभी आपके साथ में और यह है लंच बॉक्स का करवा, जबकि इस द वीकेंड, ऐसे में फ्राइडे का ये सफर आपके साथ में अभी से लेकर तीन तक चलता रहेगा। 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, साथ में हम फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करिए। आज का प्रोग्राम बिल्कुल भरा और पूरा रहेगा, आपके साथ में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स ये सभी कुछ शेयर करते रहेंगे, बस सुनते रहिए एंड कीप हमिंग। अभी का प्यार भरा नमस्कार वंस अगेन।
1: बचाओ

हम पर लंच बॉक्स में मैं हूँ आपका साथी अवि। और अक्सर लोग चेंजेस लाने के लिए अपने लाइफ में न्यू ईयर्स का इंतजार करते हैं सो दैट दे कैन मेक अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर जो आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने फिटनेस को लेकर या फिर अपने एजुकेशन को लेकर या फिर अपने फर्स्ट होम को लेकर, तो ये जो चेंजेस है आप कभी भी ला सकते हैं बाय मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। यानी कि जो फ्रेश स्टार्ट है आप किसी भी डेट को कर सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना कि जो गोल्स है आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, ताकि एक गोल अचीव करने के बाद में आप सक्सेसफुल होकर दूसरे गोल की ओर बढ़ सके। क्योंकि अगर जो आप लॉन्ग टर्म एक डिफिकल्ट गोल बना लोगे तो जब ये कंप्लीट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके बाद में व्हेन यू गेट दिस विनिंग हैबिट यू कैन गो ऑन और अपने जितने भी चेंजेस है उसको आप अचीव कर सकते हैं। सो छोटी छोटी बातें आपके साथ में, हालांकि वीकेंड है, नथिंग इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम मेकिंग अ चेंज इन द वीकेंड एज वेल।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699 and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
5: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक. प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू. सुपर हाइब्रिड

0: हम पर लंच बॉक्स में ऑफिस शाउट आउट में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं राज ऑटोमोटिव एंड टायर के स्टाफ और आपने लिखा है कि वी आर ट्यून्ड इन टू हम एंड एंजॉयिंग आवर लंच विद लंच बॉक्स शो. इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहे, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड. जबकि लंच बॉक्स का ये कारवा है 3 तक चलता रहेगा और इसी तरह से हमारा साथ आप भी देते रहें.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर यह है लंच बॉक्स का कारवा। मैं हूं अवि आपका साथी। भजन जेम्स जो कि कल होने को है सैटरडे 22 अगस्त को एट 7 PM वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में ये जो कॉन्सर्ट है ये रहेगा। आपके पास में मौका है जबकि साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट ये साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं कलाकार रवितेश देव को जो कि एक लाइव बैंड पर परफॉर्म करेंगे आपके लिए। प्रेजेंट करेंगे डिवोशनल म्यूजिक फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स को और ये सभी कुछ सुनने का मौका है आपके पास में। टिकट्स है सिर्फ $30। बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स बेचे जाएंगे। टिकट्स आप ले सकते हैं eventbrite.com से, जेस फ्रेश पापाटोई साथ में वेली फ्रेश पापाटोई और शिव प्रसाद केल्सन से। यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि इनका जो मोटिव है ये है कि जितने भी प्रोसीड्स हैं ये दिए जाए सीधा इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो आप यहाँ जाकर इनको सहयोग दे सकते हैं इस नेक कार्य के लिए।

0: हम पर यह है जायकेदार लंच बॉक्स और मैं हूं आपका साथी अवि। जबकि आज है फ्राइडे 25th of August, तो ऐसे में विनय शर्मा अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओकलैंड में पपटोई में हैं, और आपको ऐसे मौके पर ढेर सारा प्यार दिया है। आपकी पत्नी है प्रीति, आपके बच्चे हैं, आपकी मम है प्रतिभा, साथ में आपकी बहन है वंदना, इन सभी ने मिलकर आपको ढेर सारे बेस्ट विशेज दिए हैं। तो विनय, हमारी ओर से भी, हम की पूरी टीम की ओर से, अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
3: और कानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

चटनी शॉट्स। आज लंच बॉक्स चटनी शॉट्स में बातें करेंगे वेन ब्राउनिंग के बारे में, जो तुआकाउ के एक रेसिडेंट है और गार्डनिंग करते हुए उन्होंने अपने रिस्ट को हाइपा एक्सटेंड कर लिया था, जिसके बाद में उनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाना पड़ा और उस सर्जन ने एक रिपोर्ट, एक क्लेम इनके लिए ICC में फाइल किया।

0: जाते हैं, फाइट आउट नहीं करते हैं थ्रू द लीगल सिस्टम। तो एक छोटी सी झलक आपके साथ में, ताकि आप भी आगे चलकर अपने आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेटा को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: दिल से दिल तक। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ कि आपको यादों की दुनिया में लेकर जाए विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना अगर जो आपको भी किसी साउंड फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है तो नंबर है 0800 रचना

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जाओ आज कुंजे के
1: लंच के मंच पे
2: मैं हूँ सुता सा छोरा
1: You're listening to Avineet.
3: हम पर लंच बॉक्स में मैं अभी आपका खास स्वागत करता हूं इस आवा पर जबकि तीन तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा इसी तरह से और आपको बता दूं इस मौके पर हम बोर्डिंग कॉल के बारे में विच इज नाउ ओपन आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है इट कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे और आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी कैसे आपको एंटर करना है बस हमको आप एवरी वीकडे सुनते रहें और अपने कान खुले रखें फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल क्यू जो आपके लिए प्ले होगा सुबह 8 के करीब साथ में दिन में 11 के करीब आफ्टरनून 1 PM के आसपास साथ में 5 PM इन द आफ्टरनून इसी टाइमिंग्स के आसपास आपके लिए जो बोर्डिंग कॉल है ये प्ले होगा और सुनते ही आपके पास में 60 मिनट्स का समय है जबकि आप रोवा पर जाकर टाइप कर सकते हैं बोर्ड नाउ और सबमिट क्लिक सकते हैं अगर जो आपको इस कंपटीशन पेज का एक लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें दैट्स इट यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु जर्नी डोंट मिस आवर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु विजिट flysolomons.com T's and C's डू अप्लाई सो कान खुले रखें क्योंकि अब किसी भी समय आपके लिए बच सकता है Special boarding call.

लंच बॉक्स में कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए है लंच टाइम रेंट लाइन, और आज का जो टॉपिक है आपके साथ में ये है कि अगर जो आप किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं और आपको बिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और दी गई है, तो ऐसे में जो शेयरिंग ऑफ द बिल है शायद ये इक्वल नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आपने कोई सिचुएशन फेस किया है जहां पर बिल्स इक्वली शेयर्ड नहीं किए जाते हैं? 5599 पर अपना जो मैसेज है रेंट लाइन में आप लिख कर भेज सकते हैं।

हम पर लंच बॉक्स का कारोबार जारी है जबकि वीकेंड है और ऐसे में काफी लोग अभी लंच कर रहे होंगे वेरी हैप्पली क्योंकि इनके बाद में जस्ट फ्यू मोर आवर्स टू गो और फिर आप फ्री होंगे फॉर द वीकेंड। आपको बता दूं रक्षाबंधन सोशल के बारे में जहां पर हमारे सोशल मीडिया पेज पर रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन जारी है और आपको सिर्फ हम फेसबुक पेज पर जाना होगा और यहाँ पर हमारा जो राखी का पिन पोस्ट है उसके नीचे कोई भी स्पेशल आइटम है जो आपके लिए आपके रिश्ते में भाई और के बीच में कोई ऐसी फोन मेमोरीज है किसी आइटम को लेकर किसी चीज को लेकर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर और इसका जो फोटोग्राफ है आप अपलोड कर सकते हैं हमारे हम फेसबुक पेज पर। उसके नीचे उस फोटो के नीचे आप दो तीन लाइंस लिखें क्यों आपके लिए ये मेमोरी स्पेशल है या ये ऑब्जेक्ट क्यों स्पेशल है। बस इतना करके अपने सिबलिंग को टेक करें और आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे $300 जीतने के लिए, जबकि ये जो ड्रॉ है अगले वीक होगा August 28th को और ऐसे में आपके पास में लेस देन अ वीक है टू एंटर। $300 कैश का गिव अवे प्राइज है जो आप जीत सकते हैं। तो चूके नहीं इस मौके से और हम फेसबुक पेज पर जो रक्षाबंधन सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन है इसमें शामिल हो जाएं। लंच के मंच

0: हम्पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अवि और आपको ले चलता हूं बॉलीवुड की दुनिया में, जहां पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रणवीर सिंह की फोर्थ कमिंग मूवी आफ्टर धुरंधर, ये अब इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसका नाम है प्रलय और एक हाई एंड की प्रोजेक्ट ये रहेगी, जबकि इसको बैक कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बिरला स्टूडियोज प्रोडक्शन। और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस फिल्म से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। इन द मीन टाइम जो रणवीर सिंह का जो एक केस फरहान अख्तर के साथ में चल रहा है डोन 3 को लेकर, ये अभी भी अनरिजोल्व है, जहां पर दोनों पार्टीज़ अभी भी एक दूसरे से बात कर रही हैं, निगोशिएट कर रही हैं। ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की दुनिया से, क्योंकि हम इज़ योर बॉलीवुड फेवरेट डाल प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम।
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Vacation. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: मॉर्निंग्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
2: लंच बॉक्स का जायकेदार सफर जारी है और मैं हूं आपके साथ में अवि। आपको रक्षाबंधन ऑन एयर के बारे में भी बता दूं, एक ऐसा प्रमोशन जहां पर आप सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देकर लाइव ऑन एयर जीत सकेंगे $250 कैश इनाम, जिसका ड्रॉ रहेगा 28 अगस्त को। इस कंपटीशन में भी 2 लकी विनर्स ठहरेंगे जिसके हाथ लगेंगे $250 का इनाम। आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, हमारे जो आरजेज हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज में आपको मौका देंगे कि आप 0800004866 पर कॉल करके अपने सिबलिंग के बारे में जो भी रिव्यू आप देना चाहते हैं, आपको कुछ उनके बारे में अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी उनकी हैबिट है जिससे आप बहुत चिढ़ते हो तो उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। बस इतना करके आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जो ड्रॉ होगा 28 अगस्त को जस्ट इन टाइम, ताकि आप अपने सिबलिंग के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट ले सकें।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ आपको एक और एक प्यारा सा थ्रोबैक सुनवाए और उसके बाद में दो पर आपके लिए रहेंगे समाचार।

0: अमी ने बनाया जो जो हम ही से बिखर गया।
1: आओ नई ईंटों से वही आशियाना बनाए।
2: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: 정재기.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि, जबकि जस्ट आफ्टर टू तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और ऐसे में इस हवा पर आपको बता दे, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनविटेशन दे रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल, विच इज टुमारो एंड डे आफ्टर, यानी कि शनिवार और संडे को आप जाकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप देखना भी चाहते हैं तो यू कैन हेड आउट टू बेकनहेड स्काउट्स हॉल। और इसके साथ में अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए और जानकारी चाहिए तो न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर जाइए या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर कॉल करें। और हमारे सैंडी और रुजबे ने बातें की है पंकज के साथ में इन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, जहां पर इस गेम को लेकर काफी रूल्स को लेकर बातें हुई हैं। अगर जो आप भी कीन है, इंटरेस्टेड है कैरम बोर्ड के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो CV लिखकर 5599 पर भेजें। इसके साथ में आज रात को ही ओकलैंड भक्ति सत्संग प्रेजेंट कर रहा है ग्रैंड 3 कोना कीर्तन नाइट, जहां पर कलाकार अच्युतन नायर रहेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, ओकलैंड के नितिन गाउंडर, साथ में लौटोका फिजी के अश्विन कुमार अप्पा भी रहेंगे। आज रात को वैदिक सेंटा में इनका प्रोग्राम होने को है। टिकट से $20। जानकारी के लिए 02106672 36 पर या फिर 02155888 पर आप कॉल कर सकते हैं।
2: बचाओ क्या,

हम पर लंच बॉक्स में कमिंग अप नेक्स्ट इज स्किप या रिप्ले, जहां पर अभी आपको दो ऑप्शंस देंगे, आप दोनों सुनिए और आप बताइए कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, उसके फेवा में आप वोट कर सकते हैं ऑन 5599। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास में, एक बहुत ही शांत और शानदार शान की आवाज में बस आपको सुनवाने जा रहा हूँ अब।

0: जो दूसरा गाना है मेरे ख्याल से फ्राइडे फ्राइडे का फील आ रहा है, लेकिन आपको जो पसंद है उसके बारे में आप वोट करें 5599 पर।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हम
3: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
5: अभी, ब्रांड हो गया ना
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस बीरी। कॉल 24/7 ऑन 0927-88-600।
9: इमेजिन यूर स्नोबोर्डर लुकिंग डाउन अ माउंटेन। Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol, served everywhere this winter with a lime.
10: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
11: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
12: Jen didn't think she needed a DVS system.
13: Oh, I've got insulation in that.
12: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
13: Ah, yeah.
12: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: या रिप्ले।
1: हम पर यह है लंच बॉक्स का कारोबार। और आपको बता दूं, अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में सिंडी और उजबे ने बातें की हैं चार प्रोमिसिंग ईयर 13 के स्टूडेंट्स फ्रॉम ओमिस्टन सीनियर कॉलेज, जिन्होंने अपने स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को बना दिया है एक रियल वेंचर जिसका नाम है मनी मेहम। और मनी मेहम एक ऐसा गेम इन बच्चों ने डिज़ाइन किया है सिर्फ जो किड्स है बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 15 इनके लिए, ताकि ये कहीं ना कहीं गेम के द्वारा अपने लाइफ में भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाना सीख जाए। ये सभी कुछ इनको इंस्पिरेशन मिला है फ्रॉम अदर बोर्ड गेम्स। कैसे ये आइडिया इनको आया है और कैसे इस आइडिया पर इन्होंने काम किया है, ये सभी कुछ अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में इन्होंने खुलकर बातें की हैं। अगर जो आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को सुनकर कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिले, या फिर आप मनी मेहम के बारे में और कुछ सुनना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजे और आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप जाकर ये पॉडकास्ट सुन सकेंगे।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

स्किपिया रिप्ले में ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जबकि इस गाने को वोट्स मिले हैं 4 और वोट दिया है कुसुम ने, साथ में है स्मिता और इसके अलावा राजीव ने भी मैसेज किया है, इसके साथ में श्रिया ने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच आपके लिए, इंजॉय दिस वन आउट देयर।

लंच बॉक्स का ये कारोबार आपके साथ में तीन तक चलता रहेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपके साथ में लेकर आऊंगा टेक टॉक, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढकर हम लाते हैं।

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
5: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
6: Bunnings has great value nailed across the store.
7: Get your garage sorted with a Stanley 17 compartment storage organizer, $10.18, or a Command 1.8kg broom holder, just $9.98. Head in store or online for even more great value.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
9: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
10: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
12: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. TikTok.
2: आज टिकटॉक में आपके साथ में शेयर करेंगे एक ऐसा फैक्ट जो बिल्कुल एक रियलिटी है. जबकि बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि बॉसेस को रिलाय नहीं करना चाहिए वर्चुअल जॉब इंटरव्यूज पर जब वे नए हायरिंग कर रहे हैं. तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स की जो पर्सनैलिटी है, पैशन है, ये खुलकर सामने नहीं आती है. जबकि आज एक कल्चर है इंटरव्यूज कंडक्ट करना विया जूम और टीम्स. तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल का कहना है कि ऐसे में एक यंग पर्सन कैसे शाइन कर सकता है, जबकि ये जो एक आधुनिक ज़माना है जहाँ पर AI काफ़ी इन्वॉल्व है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जूम पर या फिर टीम्स पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो तो जो एप्लीकेंट है इसको एक सही मौका नहीं मिल रहा है टू शाइन. तो ये जो बातें हैं ये दोनों तरफ से वैलिड है, जबकि बॉसेस को भी नहीं पता लगेगा. साथ में जो एप्लीकेंट है इसको कैसे एक मौका लगे कि ये पर्सनली अपना जो चार्म है, जो अपना रिस्पॉन्स है, ये दे सके फॉर अ जॉब इंटरव्यू. तो ये कुछ बातें आपके साथ में टिकटॉक में, जहां पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं रादर देन इन पर्सन.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: आज के लिए लंच बॉक्स में बस इतना ही। 12 से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम होपिंग कि आपने अपना लंच बॉक्स इंजॉय किया, और इसके साथ में अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, जबकि लेकर आऊंगा आपके साथ में सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो। अभी के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए थ्रोबैक विद अ काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना, इसे भी इंजॉय करो। 3 बजे के बाद में आपके साथ में हो जाएगी सैंडी, लेकर आएंगी कॉफी ब्रेक, और इसका भी आप इंतजार करें। इन द मीन टाइम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल सुबह मुलाकात होगी। डू टेक केयर, बाय। थ्रोबैक
1: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
2: You filled the pinata before I sealed it, right?
3: No, you did.
2: I thought you did.
4: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
5: Kia ora. If you enroll to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
6: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
9: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A report dated June 2025 outlining landslide and rockfall risks on Mount Maunganui found there was a high risk to life. It featured in a meeting agenda for August last year, but the meeting was cancelled. Tauranga City Council has confirmed none of the relevant councillors who were due to attend read it. A review into January's landslide tragedy found years of warnings about the risks were never acted on. New South Wales police are investigating failures that led to Lily Hooper's family mistakenly being told she was alive. The 18-year-old's body was found after an 8-day search, but there was a mix-up in the delivery of the news. Commissioner Mel Lanyon has apologised.
11: The miscommunication obviously went through policing commands and up to government. It was something that was inadvertent, but as I said, was born out of looking to find Lily and bring her back to her family.
10: New Zealand's total regional greenhouse gas emissions have dropped to their lowest level in nearly two decades. Taranaki led the way for the second year in a row. Firefighters have been called back to Christchurch Adventure Park for a second time this week. A forestry slash pile that burned on Monday began smouldering again this morning. Fortunately, no damage has been reported and crews have now left the scene. To sport the return of the Ranfurly Shield to Northland for the first time in 48 years. The last time the Shield was in the North, Robert Muldoon was Prime Minister. The highest grossing movie was Grease, and at Carter Farms Park, Andy Hayden dived out of a line-out as if he was in some C-grade movie. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the Tall Ferns have beaten South Sudan 82-74 in the pre-Olympic basketball tournament in Mexico.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: वेदर का हाल आज वैसे से अब थोड़ा क्लाउडी ग्लूमी हो गया है, लेकिन सुबह सुबह क्या मस्त धूप खिली थी यार. एनीवे लाइट शावर्स हो सकते हैं जो क्लियर आउट होंगे इवनिंग में. साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा. ओवर नाइट टेम्परेचर्स गोना बी एज लो एज 9 डिग्रीज, अभी महसूस कर रहे हैं अराउंड 15.
9: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
13: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: कॉफी ब्रेक विद सैंडी, Drive Show with Sandy and Rizbe.
14: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
12: 3:02 हुए हैं। गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है ड्राइव शो में। हाय सैंडी।
14: गुड आफ्टरनून रुस्बे, कैसे हो तुम?
12: आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत बात कर रहा हूँ और बहुत फास्ट बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगा ये वेदर अपडेट मैंने क्या किया ना? जूम जूम जूम,
14: तुम सैंडी हो गए हो
12: भाई साहब, क्या हो रहा है? मेरे को ऐसे लग रहा है यार कि मैं बहुत सैंडी हो रहा हूँ और सैंडी बहुत रुस्बे हो रही है, क्योंकि सैंडी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना इम्प्रूव हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
14: या वो डिसाइड करता, व्हाट डू यू मीन, पहले नहीं था,
12: नहीं था पहले। आप खुद बोलो, आप खुद सोचो के लास्ट 4 ईयर्स में
14: मैं क्यों सोचूं, लिसनर सोचेंगे ये, आप मुझे बताओ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पहले बेटर था या अब बदतर हो चुका है?
12: नहीं 0800-004-866 आज आप अपने भाई बहन का मत रिव्यू करें, आज आप सैंडी का रिव्यू करें, यहाँ पे कॉल करें एंड प्लीज ऑनेस्टली फील फ्री टू शेयर हाउ मच ऑफ एन इम्प्रूवमेंट सैंडी हैज एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 4 ईयर्स। चार साल हो गए ना शायद,
14: 2022
12: चार साल हो गए यार। 0800-004-866 कितनी सैंडी की लाइफ अपलिफ्ट हुई है?
14: अपलिफ्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सो प्लीज क्लेरिफाई गाइस, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ।
12: अच्छा ठीक है, एनीवे आई लीव इट अप टू यू
14: एंड आल्सो
12: यू कैन आइदर डिसाइड टू बी ऑनेस्ट और यू कैन डिसाइड टू बी फनी।
14: एंड आल्सो अपने यंग लिसनर से मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, यंग एज इन की बच्चे, अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं ये वो, what do you mean, जैसे 6-7 आया था, okay, what do you mean when you say you the birthday?
12: अच्छा ये क्या, ये नया आइटम आया क्या कुछ?
14: ये नया आइटम है भाई।
12: क्या क्या क्या, you
14: the birthday, like birthday, happy birthday वाला birthday,
12: you the birthday,
14: yeah you the birthday। अच्छा। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या हो सकता है?
12: आज तेरा birthday है?
14: No but something related to it, so अगर किसी को पता है to the young,
12: oh मेरे को समझ में आया ये क्या है, you the birthday, मतलब तुमने कुछ नया पहना है?
14: नहीं ये भी नहीं,
12: ये भी नहीं है,
14: yeah, so call कीजिए या message कीजिए, नहीं तो थोड़ी देर में मैं तो बताने ही वाली हूँ।
12: okay, Gen Alpha in the house, make some noise, 0800-004-866 अपने parents को बोलिए यहाँ पे call करने को,
14: you the birthday,
12: you the birthday का मतलब क्या है? कहिए

0: You're listening to the Drive Show with Sandy and Rusbe. आज Friday special आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं Drive Show में, इसलिए इतने जल्दी हमने शुरू कर लिया ना आज Drive Show.
1: Yes, and सवाल मैंने पूछा था कि you the birthday आजकल ये जो नया slang है इसका मतलब क्या है.
0: राहुल पांडे ने हमें यहाँ पे message किया है, उसका वो बोल रहे हैं कि when is your birthday और when is your birthday.
1: What is your birthday और when is
0: your birthday? What is your birthday?
1: No, ये भी सही answer नहीं है.
0: Okay. क्या है सही आंसर? एक मिनट रुको, इनसे भी पूछ लेते हैं. यो द बर्थडे.
2: थैंक यू, यो द बर्थडे.
0: अच्छा, ऐसा है, थैंक यू बोलना पड़ता है उससे.
1: Yeah.
0: क्या होता है उसका मतलब?
1: इट्स राइट.
2: इसका मतलब है यू आर गिविंग मेन कैरेक्टर वाइब.
1: या
0: ओह माय गॉड,
1: सो समवन हु इज द मेन कैरेक्टर, मेन इवेंट. सो बर्थडे पर्सन इज ऑलवेज द मेन पर्सन, राइट? यू द बर्थडे मींस कि यू आर द मेन स्टार ऑफ द रूम.
0: परविंदर यार, यू द बर्थडे.
2: अरे मैं स्कूल में हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसे पता है.
0: और क्या, और क्या ऐसे आइटम है नया नया बताओ यार कुछ.
2: अभी ऑन द स्पॉट तो नहीं, पर एक दूसरे को बच्चे पुकी पुकी बोलते हैं.
0: हाँ पुकी कुछ तो भी है ना.
1: क्या बोलते हैं?
0: पुकी पुकी
1: पुकी तो पुराना है ना.
0: क्या है पुकी, मतलब क्या है
1: पुकी का मतलब? होता है
2: की
1: Yeah, Pookie is like a, it's like a bay.
0: Rusbe?
1: हाँ. Bay, bay, B-A-E.
0: हाँ वही मतलब.
1: नहीं Rusbe नहीं.
0: अच्छा, okay.
1: वो वाला bay का नया मतलब is another word, Pookie.
0: Pookie.
1: Yeah, because.
2: मौका चाहिए अपना नाम बुलवाने का.
1: बे वाला बे नहीं बोला मैंने, बे वाला बे नहीं है ये.
0: Got it.
1: या थैंक यू परविंदर.
2: अभी रिसेंटली द्वारा होने लगा है ये पुकी ना, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को बोल रहे थे. तो मैंने भी बोल दिया बाय पुकी, तो इतना खुश हुए कि टीचर ने बोला है.
1: पता है कि इंस्टा हैंडल बना हुआ है पुकी डॉट दिलजीत.
0: अच्छा, अरे एक वो दिलजीत, अभी मैं अभी एक शो कर रहा था रिसेंटली ना, तो उसमें बच्चे थे जेन अल्फा टाइप के, तो वो लोग कर्टन कॉल में हमको ऐसे थैंक यू बोलना रहता है.
1: Okay.
0: तो कर्टन कॉल में वो लोग अलग अलग रोज, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनको नहीं पता कि मैं ऑब्जर्व किया ये. ओह नो, अभी मैंने ऑनर भी बोल दिया. तो एनीवे, तो वो ना रोज आके कुछ अलग अलग एक्शन कर रहे थे. तो पहले दिन उन्होंने आके 6767 वाला किया.
1: Yeah.
0: फिर दूसरे दिन उन्होंने वो ऐसे नाक को, नाक पे ऐसे उंगली करके ऐसे कुछ तो भी करते हैं ऐसा.
1: Okay.
0: एक एक हाथ नाक पे रखते हैं और दूसरे हाथ से कुछ तो भी ऐसा
1: वेव करते हैं.
0: हाँ, समथिंग ऐसा कुछ करते हैं. I don't know exactly, मैं देख नहीं पाया अच्छे से. बट ऐसा कुछ अलग अलग आइटम ये लोग लेकर आए रहते, दो दिन पे दो अलग अलग चीजें लेकर आए वो. वेरी क्रिएटिव,
1: वेरी क्रिएटिव, कुछ भी बनाते हैं.
0: अगर किसी को कुछ भी बनाते, ये क्यों बोल रहे हो?
1: अभी 6-7 कुछ भी था ना,
0: ये कि आपने जेंजीज के बारे में भी ऐसा ही कहा था
1: अभी. मैंने ऐसा नहीं कहा था.
0: ऑलवेज रिस्पेक्ट योर यंगस्टर्स.
1: इट्स कॉल्ड स्कूबा.
0: हाँ स्कूबा. हाँ, डुबकी मार रहे ऐसा. ओह राइट, यस यस,
1: सी
0: इसका मतलब क्या होता है
1: स्कूबा?
0: अरे
1: ओ इसका मतलब क्या है? Okay.
0: क्या मतलब डुबकी मार रहे हैं?
1: तुम्हें किस बात पे उन्होंने किया था ये?
0: अरे कर्टन कॉल पे कर रहे थे वो लोग.
1: अच्छा.
0: ऐसा मुझे नहीं किया था.
1: Okay.
0: वो ऑडियंस को देख के कर रहे थे.
1: ओके.
0: हाँ.
1: एनीवे,
0: इसका मतलब भी समझो यार, तो स्कूबा का मतलब क्या है
1: तो बेटर रहेगा.
0: बट पॉइंट ये है सैंडी, दैट वी शुड रिस्पेक्ट आर यंगस्टर्स,
1: 100%,
0: बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द जनरेशन व्हेन वी आर गोइंग टू बी बुड्ढास. तो तुम अभी जितनी उनकी इज्जत दोगे.
1: मैंने रील देखी ना. हाँ. एक जो जाते हैं ना माइक लेके डिफरेंट जगह पे जाते हैं, आप इसको क्या मैसेज. हाँ. देना चाहेंगे, इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे,
0: वॉक्स क्या,
1: वो बंदा. हाँ, वॉक्स पॉक्स. तो वो. हाँ. बंदा के पास जाता है, कहता है कि आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? कहता डोंट कम.
0: वो आने वाली जनरेशन नहीं, वो अभी के जनरेशन को देना है कि डोंट कम का वो लोग ही करेंगे ना, डोंट गेट. एनीवे, अरिजीत सिंह आपके लिए. इन फीजी रुज़बे यू वी यूज अ स्लैंग लाइक सेट मींस ऑसम. हाँ वो तो पता है, सेट है, गुड, परफेक्ट. इन एवरीथिंग विच इज गुड इट्स यूज्ड ऑलवेज. अच्छा, बाबूराम ने ये भेजा है, सेट है. ऑल्सो राइट है ना.

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
4: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: most wanted.
1: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
2: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेल माहौल बनाने का टाइम है यहाँ पे क्योंकि आप सुन रहे ड्राइव शो ऑलरेडी एंड आज फ्राइडे का दिन तो आज फ्राइडे के दिन पे हम आपके लिए ये थोड़े बहुत गेम्स यहाँ पे लेकर आते हैं
1: गेम्स भी लेके आएंगे और एक नया कंपटीशन भी लेके आने वाले हैं बिकॉज फादर्स डे आने वाला है तो ऐसे मौके पे फादर्स डे पे अपने डैड के लिए आप कुछ यहाँ पे जीत सकते हैं
0: डैड के लिए कुछ जीतने का मौका आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या करना होगा सैंडी उसके लिए
1: 4 बजे के बाद बताएंगे
0: 4 बजे के बाद ओके
1: आज लॉन्च हो रही है यस
0: 4 बजे के बाद आज लॉन्च होने वाला है ये नया प्रमोशन जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं
1: अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं तो एक कंपटीशन आप ऑलरेडी जाके चेक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे
0: फादर्स डे का
1: तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है स्पेशली फेसबुक पर अगर आप एक्टिव है तो हम के पेज पे जाएगा एक कंपटीशन जो अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है सोशल मीडिया का रिगार्डिंग फादर्स डे वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं
0: ओह यू गेट द अर्ली एक्सेस
1: यस
0: चेक कीजिएगा तब तक वी आर गोना बी हैप्पी
1: एंड ऑल्सो आज हम बात करेंगे थोड़ी देर में 4 बजे के बाद ऑल्सो रवितेश दियो के साथ भजन जैम्स होने वाला है इसी वीकेंड पे तो वी गोना कॉल देम एंड शेयर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस
0: कल ही हो रहा है ना ये शो
1: कल ही या कल हो रहा है 22nd
0: को वैदिक सेंटर पापा टोचोई
1: या

0: आदिव असलम की आवाज. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक मैन. दिस इज अ कंप्लीट फ्राइडे सॉन्ग आई वुड से.
1: और फ्राइडे से याद आया कि आज की जो हमारी थीम है ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद, इट्स गोना बी अ डिस्को थीम.
0: डिस्को?
1: या सो डिस्को थीम के डिस्को थीम के गाने या ऐसे वाले गाने हम आज सुनने वाले हैं 6 बजे के बाद.
0: क्यों ऐसा डिस्को क्यों सोचा आपने? क्या है मतलब
1: ऐसा? इट्स फ्राइडे थीम ना.
0: फ्राइडे थीम, डिस्को थीम.
1: इट्स अ डिस्को थीम. डिस्को दीवाने दे.
0: नहीं वो नहीं. डिस्को.
1: डिस्को भी आ सकता
0: है. स्टेशन. डिस्को. ऐसा कुछ तो भी था ना.
1: नहीं, नाजिया हसन का वो गाना है डिस्को दीवाने.
0: एक और गाना है डिस्को 82.
1: डिस्को 82 भी है. या
0: भाई बहुत डिस्को वाले बहुत गाने हैं.
1: या या दर्द डिस्को भी है.
0: ओ दर्द डिस्को भी है. यस यस दैट्स
1: राइट. सो अगर आपको कोई गाने पता है डिस्को थीम के या डिस्को वाले तो लिख के भेजिए 5599 पर.
0: डिस्को वाले किसको कोई देसी बीट बजानी, वो भी गाना है ना.
1: वो भी है या काइंड ऑफ वो भी फिट हो सकता है. लेट्स सी. एंड मैंने न्यूज़ पढ़ी, तुम्हें पता है चाइना में क्या हुआ है? एक वायलिन है वो $37,000, वो कहीं पे बस में किसी ने एक्सीडेंटली छोड़ दिया. लेफ्ट ऑन अ बस. पुलिस कंटिन्यू सर्च कर रही है, मतलब इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है. अभी तक उस वायलिन का ओनर नहीं मिला है. $37,000 वर्थ है और किसी ने उठाया नहीं, सीधा पुलिस को दे दिया. सो या दिस इज लाइकली मच मोर देन जस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट. सो बिकॉज वायलेंस जो होते हैं कई बार यू नो इट्स पर्सनल प्रोफेशनल एंड सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है वायलिन को लेके. तो या ऐसा हुआ है.
0: तो वो ऐसे पुलिस को दे दिया वो लोग ने.
1: पुलिस को दे दिया $37,000 का है वो.
0: वाओ यार दैट्स सो कूल. दे फिगर आउट
1: कि दिस वायलर इज एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव.
0: बट दिस इज समथिंग दैट इज यू नो रिसेंटली हमें यहाँ पे एक हमारे रिसेप्शन से एक ईमेल आया था. एक इंसान का एक पेन
1: कहीं पे रह गया मीटिंग रूम में.
0: रह गया था मीटिंग कहीं तो मीटिंग रूम में या कहीं तो भी रह गया था. और एक पुराने टाइप का पेन था वो. और लिटरली वो ईमेल में था कि अगर किसी ने एक्सीडेंटली अगर वो ले लिया है तो प्लीज रिटर्न करो. काफी इमोशनल वैल्यू है वो.
1: इट्स अ सेंटीमेंटल वैल्यू अटैच्ड टू द नहीं तो पेन कोई ऐसे ढूंढता नहीं है. पेन तभी इंसान ढूंढता है जब उसके ऊपर कोई सेंटीमेंटल वैल्यू होती है. और पेन को रिलेटेड मेमोरीज भी होती है ना कईयों की, किसी ने गिफ्ट किया होता है. बिकॉज़ पहले गिफ्ट बहुत करते थे, पेन एज अ गिफ्ट देते थे पहले.
0: दैट्स राइट. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट कि इट इज सच अ बिग थिंग ना.
1: हां कि इसको मेरे को लगता है इन्होंने अभी सुना क्या रुवा पे. रुजबे इज मोर ह्यूमरस. सॉरी सैंडी.
0: बट वो सैंडी को पता है. व्हाई आर यू स्टेटिंग फैक्ट्स?
1: या
0: दिस इज डोंट स्टेट फैक्ट्स. नहीं, what we are trying to ask is, what we were trying to ask now that people are little active, is that, do you think कि पिछले, अगर आप सैंडी को पहले से सुनते हो, क्या आपको लगता है कि पिछले 2-3 सालों में सैंडी has become more funny, more humorous, more easy going?
1: मुझे ऐसा लगता है कि डाउनवर्ड गया है. रुजबे को ऐसा लगता है कि मोर ह्यूमरस हो
0: चुकी है. लग रहा है मोर एकदम ऐसा एकदम एस एकदम ऐसा यू नो नेक्स्ट लेवल हो गई है सैंडी अभी.
1: वो पूछा था यहाँ पे रुजबे ने.
0: अच्छा वो
1: अच्छा, राहुल पांडे बोला कि लेट रिप्लाई.
0: कोई बात नहीं.
1: बेटर लेट देन नेवर.
0: ठीक है तो एनीवे यार मेरा ट्रेन ऑफ थॉट्स मिस हो गया. अभी आप सुनिए ये जिससे हमारा पेट पलता है. कॉफी
2: ब्रेक विद सैंडी. हमको गारंटी दी थी कि तुम सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो. अब दिखाओ.
3: हम Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड रिमेम्बर आप हमारा पॉडकास्ट चेक करना ना भूलेगा. नया पॉडकास्ट जो हमने रिलीज किया है जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के साथ बातें की है अबाउट द गेम दे हैव क्रिएटेड एक्सप्लोर. अक्सर यहाँ पे हाइक्स या ये सारी चीज़ें आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते हैं बट ये जो गेम है ये खेलते समय आप न्यूजीलैंड के हिडन जेम्स को डिस्कवर कर सकते हैं एंड ये हिडन जेम्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है अब आप भी वहाँ पे जा भी सकते हैं. इट्स अ वेरी इंफॉर्मेशनल काइंड ऑफ गेम एज वेल और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप यहाँ पे नए हैं या फिर अपने बच्चों के साथ यू नो ऐसा कुछ गेम्स खेला जाते हैं रिलेटेड टू न्यूजीलैंड. तो एक्सप्लोर गेम इन बच्चों ने बनाई है ईयर 13 के. सो यू कैन गो टू द पॉडकास्ट एंड चेक डिटेल्स. ड्राइव लिख के अगर आप भेजते हैं 5599 पर तो ऑटो रिप्लाई में फुल लिंक आपको मिलेगा. अदरवाइज गो टू रोवा, गो टू स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रोज़बे, तब भी ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, थोड़ी बहुत क्लाउडी पीरियड्स है, थोड़े शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा। 5:53 को होगा सनसेट एंड फील्स लाइक 15 राइट नाउ। ओवरनाइट टेम्परेचर गोना बी एज लो एज 9 डिग्रीज।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
1: 21st of August, aaj hai Friday. Good afternoon, swagat hai aapka Drive Show mein. Hi Sandy.
4: Hi Rusbe, a very very good afternoon. Yes, yahan pe Drive Show shuru ho chuka hai. Aur aaj ek naya competition bhi shuru karne wale hum.
1: Ji, ek aisa competition jahan pe मतलब ये कंपटीशन उन लोगों के लिए है या उन उस व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लड़कों का उनके साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत ही टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता होता है।
4: मेरे को गाना याद आ गया, अभी अभी उन्होंने गाना सुना ना हमारा पंटू का, तेरा मेरा रिश्ता।
1: अच्छा, वो वाला।
4: या बट आई नो टॉम एंड जेरी वाला भी, और मेरे को लगता है कि इट्स मोर अबाउट अनसेड वर्ड्स। मतलब इमोशंस आर देयर बट वर्ड्स आर नॉट देयर, आई विल पुट इट दिस वे।
1: या एंड अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स आर देयर। मतलब देखो हम बात कर रहे हैं,
4: कहीं ना कहीं वो डिसएग्रीमेंट्स में दोनों को पता होता है कि अगला बंदा सही कह रहा है।
1: हम बात कर रहे हैं पिता की, फादर्स की।
4: फादर्स डे आने वाला है,
1: फादर्स डे आने वाला है। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जो यूजुअली जो एक लड़के के और अपने बाप के बीच का जो रिश्ता होता है ना, एंड एनी फादर सन डुओ आप पकड़ लो, ऐसा हमेशा ना मोस्ट टाइम्स एटलीस्ट आफ्टर यू रीच अ सर्टेन एज वो ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे वो दोनों एटलीस्ट ये पुराने जो हमारे
4: जनरेशन्स
1: पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मिलेनियल किड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, मिलेनियल्स जो है उनका अपने डैड के साथ रिश्ता ऐसा होता है काफी बार कि अनसेट रिश्ता होता है, और काफी बार ये होता है कि वी हैव टू अग्री टू डिसएग्री, ऐसा टाइप का फंडा होता है।
4: बिकॉज एट द एंड समझ में आ जाता है कि यार वो नहीं चेंज कर सकते, और उनको भी समझ में आता है कि यार इसको नहीं चेंज कर सकते, छोड़ो, दोनों का ही होता है, चलो छोड़ो,
1: तो दोनों इग्नोर करते हैं।
4: But yeah, it's changing with time.
1: It's changing with time, 100%.
4: So, आज हम आपके लिए Father's Day का competition launch करने वाले हैं।
1: So, बताते हैं आपको क्या हो रहा है आपके लिए।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री, और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
1: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits and Father's Day competition. आपके लिए लेकर आए हैं हम Father's Day. यार एक बहुत ही मुझे लग रहा है it has to be a very nice, very well celebrated day.
4: Yeah.
1: Because काफी बार ऐसे हो जाता है कि like देखो यार ये अभी हो जाएगा कि फादर और मदर के बीच में कंपटीशन नहीं है ये।
4: नो नो, इट्स नॉट, एवरीथिंग इज डिफरेंट।
1: हाँ, यही है कि फादर्स को काफी बार सैक्रिफाइस काफी करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट लाइक बहुत रिस्की आ रही है मेरे को बोलने के लिए सैंडी।
4: अरे आजकल बोलोगे तो बेटर रहेगा। आजकल क्या हो गया है कि कोई भी चीज जाहिर करने में, कोई भी फीलिंग जाहिर करने में ऐसा रिस्की लगता है, बिकॉज़ द टाइम हैव चेंज्ड।
1: क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल
4: But you can say, क्या होता है
1: like, कि example मैं न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट में example, like for example अगर मैंने national की कुछ बुराई कर दी तो लोगों को लगेगा कि मैं लेबर के साथ हूँ।
4: या
1: तो लेबर की अच्छाई कर दी मतलब मैं नेशनल के अगेंस्ट हूँ, यू नो ऐसा बहुत
4: ऐसा नहीं होता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, यू टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग ओनली।
1: वैसे ही मैं फादर्स डे के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मैं
4: क्लेरिफाई करना पड़ता है अभी आजकल,
1: क्या करूँ यार।
4: Yeah, anyway, go for it.
1: But anyway, what I'm trying to say is that fathers ke saath aksar kya ho jata hai ki they are not there to celebrate your wins a lot of times. So aapne kuch kar diya hoga, kuch hoga. Fathers are mainly out there hustling or whatever, you know. Like at least ye millennial fathers ka aisa hota tha, jo millennial children ke jo father hote the, wo wins celebrate karne ke liye around nahi hote the kafi bar.
4: Aur kai bar kya hota tha ki unke upar responsibilities zyada hoti thi. Kafi cheezon ko lekar unhone responsibilities zyada sambhali hai. With time वो sharing वाली चीज़ें आई हैं, लेकिन you know बाहर के काम करने में, for example जैसे कहते हो कि bank का काम करना, ये काम करना, वो काम करना, कि बाहर के काम everything father used to handle in a family.
1: They
4: ऐसा
1: were,
4: होता था.
1: Used to भी नहीं और they were supposed to also.
4: Yeah, supposed to as well.
1: क्या भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बाप हो घर के, तुमको सब handle करना है.
4: Yeah, and emotion जाहिर नहीं करने हैं.
1: Emotion का हाँ क्या तुम क्या मतलब and then again that term also used to be you know, के like you know maa emotions ke saath hamesha ye hoti hai, associate
4: hoti hai. Yeah. Haan. But with the father it's different. So yeah, with the
1: so that's why it's important to celebrate
4: time,
1: Father's
4: yeah,
1: Day.
4: Time change ho raha hai, things are changing as well. But yeah, it's very important to celebrate Father's Day as well. Aur is baar hum dad's reverse grill leke aaye hain ki aapke dad ne to aapse bahut sare sawal puche honge, but now is the time to ask the questions to fathers as well. फॉर एग्ज़ाम्पल आज ये जो हमारे कॉम्पिटिशन है इसमें जो फादर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इस कॉम्पिटिशन में क्या है कि एक सवाल पूछा जाएगा जैसे ये सवाल हो सकता है इनफैक्ट आई विल इनकरेज kids to call over here and ask a question to their dad as well.
1: We want some kids to call here and
4: मैं example देती हूँ आपको. For example, अगर आप अपने dad से पूछना चाहोगे, dad, do you know what is the meaning of 6-7?
1: नहीं वो तो वो लोग भी नहीं बता पाएंगे.
4: मैं example ही दे रही हूँ मैं.
1: Clock it का मतलब बताओ.
4: Clock it का मतलब क्या है? या फिर as simple as you go for eSIM का मतलब क्या है?
1: eSIM?
4: It's very easy though. Skibidi जो होता है उसका मतलब क्या है?
1: क्या है वो उसका मतलब?
4: Yeah. So,
1: मैं तो बाप भी नहीं बना अब तक.
4: Yeah, तो exactly जो actually ना difference होता है ना रुस्बे, जो बाप बने हैं उनको पता है because they're dealing with these kind of stuff every day.
1: That's right.
4: So उनको पता होता है काफी चीजों का मतलब. So yeah, आप कोई अगर बच्चा यहाँ पे सुन रहा है अपने dad से पूछना चाहेगा, कोई लड़की लड़का कोई भी सुन रहा है अपने dad से, you want to ask any question, go for it. 0800-00-HUM is a number. 0800-00-4866 is a number. Otherwise, थोड़ी देर में फिर हम ही सवाल पूछेंगे. And you are in to win $500 cash.
1: $500 cash जीतने का मौका मिला.
4: $500 cash जीतने का मौका भी है. Not just question का answer.
1: So yeah, fathers in the house, make some noise. It's time for you to give us a call यहाँ पे. And इस बार अभी आपको जीतना है. हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप इनके लिए participate कीजिए, उनके लिए participate कीजिए. लेकिन नहीं, ये बार आप खुद के लिए participate कीजिए यहाँ पे. And win that $500 for yourself.
4: Friday 4th September को ये draw होने वाला है.
1: Friday 4th September. So yeah, बहुत कम time बाकी है. फटाफट participate कीजिए. We literally have only 1 week, two weeks of promotion. So yeah, 2 weeks and you could win $500. Well, we have someone. Hi. Hello. Hi.
4: Hi.
5: Vin, Sandy, how are you guys?
4: Good. आप कैसे हैं?
5: Good, good. मेरा क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपसे अलग है.
4: हाँ.
5: कि जब आई वाज ग्रोइंग अप तो यू नो जैसे बोल रहे थे कि बेकी थोड़े अवेलेबल नहीं होते थे, बिजी वर्किंग, सो वी डोंट कनेक्ट विद डैड्स एज मच, राइट? और मम्मी पूरा डैड का नाम यूज करके हमें डरा धमका के रखती थी.
4: पापा को पता चला तो ये होगा,
1: पता चला पापा से बात कर.
5: हाँ, जैसे बड़े हाँ तो पता चला कि डैडी को तो कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, वो तो वैसे ही बदनाम थे बेचारे. और बट अभी मैं अपने डैड को अपनी बेटी के साथ देखती हूँ, ही इज लाइक द मोस्ट चिल गाय एवर. आई एम लाइक हु इज दिस गाय?
1: ये मेरे साथ तो कभी नहीं थे चिल.
5: मेरी बेटी उनके सर पे चढ़ रही है, उन्हें हग कर रही है, किस कर रही है. आई डोंट थिंक आई एवर हग्ड माय डैड. ऐसे डर है तो मुझे अपने पापा से यही पूछना है कि कौन है ये आदमी. इतना बेन पाओगे.
4: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली.
1: सो कूल यार. एक्चुअली यू आर सो राइट. अभी मैं आजकल देखता हूँ ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडडॉटर्स, उनका एक अलग ही बॉन्ड होता है. And
4: yeah, they have a very different and very very nice bond.
1: और grandfathers दिखते बहुत strict हैं.
4: Yeah.
1: लेकिन वो
4: grandfather अपने बेटे के लिए strict दिखाई देते हैं. वो मतलब अपने grandkids के लिए strict नहीं है. हाँ,
1: grandkids उनके ऊपर जैसे अर्श ने कहा अभी कि वो उनके ऊपर ऐसा full चढ़ते उड़ते full ऐसा.
4: मुझे लगता है कि वो बच्चों का बदला ना उधर ले रहे हैं कि मतलब कि तुमने जो मतलब मेरे साथ ये किया अब मैं पूरा प्यार उधर ही दे रहा हूँ.
5: बट एक्चुअली 100% अभी तक हिम्मत नहीं होती है कि मैं डैड को कुछ बोल सकूं. और माय डॉटर बोल रहा कि नहीं उनको ऐसे फोर्स करके कुछ भी करा लेगी. एंड वी आर लाइक शॉक्ड कि ओह माय गॉड लाइक माय डैड इज डूइंग दोस थिंग्स लाइक शी कैन पेंट हिज नेल्स.
1: Oh,
5: do
1: wow.
5: his hair, put makeup on, and I'm like, oh my god, shocked.
4: And I think also because I think Arsh, he's more relaxed person right now, because us samay par he was busy to raise his own kids. तो मेरे को लगता है कि अभी शायद वो थोड़ा और रिलैक्स है तो ही इज एंजॉयिंग द ग्रैंडकिड्स.
1: तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अर्श वाज अ डिफिकल्ट किड दैट ही हैड टू रेज.
4: लगता तो है.
1: ओह माय गॉड,
5: द ग्रैंड पेरेंट्स गेट टू रीलिव लाइक यू नो देयर किड चाइल्डहुड.
4: या
5: अपने बच्चों के साथ जब अभी हम बिजी हैं तो अभी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं होता तो हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के चले जाते हैं. राइट, तो आई थिंक इट्स जस्ट देयर वे ऑफ लिविंग देयर किड्स चाइल्डहुड.
1: दैट्स राइट, दैट्स राइट.
4: एंड एट वन पॉइंट ऑफ एज वो भी बच्चे जैसे बन जाते हैं ना, तो या वो ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं.
5: माँ की ममता तो दिखती है, बाप का बापता नहीं क्या देखा.
4: दैट वाज गुड क्वेश्चन अर्श.
1: थैंक्स अर्श यार, थैंक्स फॉर कॉलिंग.
4: थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू. All right, so fathers, you can give us a call over here. 0800-004-866 is the number. Abhi ke liye gaana sun lete hain.

0: वरुण धवन और रोहित सराफ के ऊपर फीचर्ड ये बहुत ही बढ़िया सा गाना पनवाड़ी आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। वेल आज मौका हमें मिला है कि हमने बहुत बिजी हमारे रवितेश देव को पकड़ा है क्योंकि कल उनका कॉन्सर्ट हो रहा है, कल उनका शो हो रहा है भजन जैम्स।
1: बहुत ही बढ़िया शो होने वाला है रुजबे जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। फ्यूजन होगा भजन एंड कीर्तन का। सो कल होने वाला है 7 PM ऑनवर्ड्स वैदिक सेंटर में। थोड़ी और डिटेल जानने के लिए रवितेश हमारे साथ यहाँ पे शामिल हो चुके हैं।
0: रवितेश गुड आफ्टरनून, कैसे हो?
2: गुड आफ्टरनून रुजबे, हाउ आर यू? गुड
0: गुड मैन गुड। एंड तैयारियां फुल जोरों में चल रही है। आई एम नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम बट हाउ इज इट गोइंग? कल शो होने वाला है आपका?
2: हाँ हाँ, कल इज शो टाइम। यस्टरडे वाज फाइनल रिहर्सल एंड वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर टुमारो।
0: That's so cool, man. So you've got a new concept. मतलब आपने कुछ अलग concept लेकर आया जहाँ पे भजन jams होने वाला है और ये पहली बार I think मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि you're going to do a very different fusion of bhajans
1: and kirtans as well.
0: And kirtans as well.
2: जी जी, so the whole music is redesigned and recreated by myself. And what I'm presenting tomorrow is a 14-piece live band. This is the first time in New Zealand that this has ever happened, where there's a bhajan jams, like a bhajan going on with 14-piece live band. So you'll get to hear various amount of instruments tomorrow.
1: तो फील कैसे रहने वाली है थोड़ा इवेंट की, थोड़ा उसके बारे में अगर बताओगे कि यू नो कौन-कौन से वोकलिस्ट वहाँ पे रहने वाले हैं?
2: हमारे साथ 3 बैकअप वोकलिस्ट हैं, मैं मेन आर्टिस्ट हूँ एंड देयर इज 10 इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग एट वंस। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट टू हियर व्हिच इज बांसुरी।
1: ओह बांसुरी भी होने वाले हैं? वाओ
2: जी,
0: That's so cool.
2: That's bringing the feel, the atmosphere.
0: Yeah, absolutely. And I think it's the thing na ki काफी बार होता है कि जो भजन और कीर्तन जो होते हैं दे टेक यू इनटू अ ट्रांस, दे मेक यू लाइक यू नो इट टेक्स यू इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। एंड आई थिंक फॉर यंगस्टर्स हु लाइक टू लिसन टू मोर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मोर ऑफ म्यूजिक, उनके लिए तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट एंड प्लस दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ गेट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट एज वेल होपफुली।
2: जी जी बिल्कुल, इट्स वेरी डिफरेंट व्हाट दे गोना हियर। इट्स रिक्रिएटेड फॉर यू नो द यंग जनरेशन दैट यू नो अ लॉट ऑफ डेज एट द मोमेंट भजन इज मोर लाइक योर ट्रेडिशनल तबला ढोलक,
1: या
2: एंड देन द यंग जनरेशन डोंट रियली you know get along with that. So what we have done is obviously the young generation likes to listen to more upbeat music, Bollywood music and all that kind, so we've recreated it in that form.
1: That's amazing. And also you are doing this in the aid of Gift of Life Fiji.
2: Ji haan bilkul, every proceeds that we collect from this concert will be donated to Gift of Life Fiji, that's under Sai Prema Foundation. And it's under the hospital Sri Satya Sai Sanjeevani and Suva.
1: Okay.
2: So it's to help little kids that are suffering from heart problems and heart diseases and all that stuff. And in Fiji, you know, they're not rich people, you know, everywhere. It's very expensive and they cannot afford to, you know, get that sorted for their kids. So it's all based on charity. So yeah, hopefully each and every ticket that's bought is going towards that cause.
0: Ravitesh, tell me this thing. So for someone who's got young kids and who's listening to the show right now, what would you tell them? कि वो कैसे अपने बच्चों को convince करे आपके show में आने के लिए? Because they love kirtans, bhajans, but now they probably want to get their children, you know, a bit exposed to this. What would you say?
2: That is exactly the whole point. That's a big question you've raised, because there's a lot of people ask me, you know, would my kids like it? The biggest thing is that if you don't bring them along, they would never know if they like it or not. Because the whole concept of bhajan is, this bhajan, the bhajan jams concept, is totally new. So I highly recommend to bring your kids along, and I'm sure they will love it. If they don't love it, then I will refund them the ticket back.
0: Oh my God, that's a big claim, bro. That's a big claim. Wow.
1: I doubt koi aisa bolne wala hai though. But Ravitesh, regarding tickets, like how many tickets are left? Agar koi jata hai Jazz Fresh Mart ya Valley Fresh ya Shiva Prasad, so wahan pe tickets hai abhi bhi?
2: जी हाँ बिल्कुल, टिकट्स उधर भी है और ऑनलाइन हमारा वीआईपी सेक्शन सोल्ड आउट हो गया व्हिच इज गॉट द जनरल एडमिशन लिस्ट, तो बहुत कुछ ने बचा है. यस्टरडे वी जस्ट रिलीज द ग्रुप ऑफ 10 टिकट्स, तो अगर कोई ग्रुप ऑफ 10 पीपल रहेगा, यू नो सम फ्रेंड्स दे वांट टू ब्रिंग अलोंग, दे कैन गेट सम डिस्काउंटेड टिकट्स दैट्स अवेलेबल ऑनलाइन ओनली on eventbrite.com.
0: Right. So group of 10, if you are a group of 10, then definitely there'll be like a good savings out there jo aap eventbrite pe jaake check out kar sakte hain. Eventbrite pe hai na tickets?
1: Yeah, eventbrite pe.
0: Ji. So Ravidesh, all the best for tomorrow. Yeah, we hope that I'm very sure that you're going to do amazing. But before we let you go, I just want to understand, so you have been singing bhajans and kirtans for how long now?
2: I've been singing various amount genre of songs for since I was I started when I was 5 personally.
0: Oh wow. Oh, wow.
2: After that I've been trained by a lot of maestros, Ustad Talat Aziz ji, a lot of people would know.
0: Mm-hmm. Yeah, Talat Aziz ji, yes. Oh wow.
2: So there's a lot. I've done many years, and I've done all my concerts I've done, I've donated each and every single cent. I've never kept anything.
1: Wow.
2: Gave it back to the community.
1: That's amazing, I guess. और इसीलिए शायद लोग आपको काफी पसंद करते हैं.
0: Ravidesh, bro, all the best, man, all the best. We are sure you're gonna rock it because we've heard you perform live and you've got such a soulful voice. Yeah, and I think we're really looking forward to hear you, you know, jam onto those bhajans and kirtans. हम really hope कर रहे हैं कि जो हमें अभी सुन रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँचे अपने बच्चों के साथ. और वो साथ में जैम करें आपके साथ, यू नो दिस वीकेंड, दिस सैटरडे, टुमारो.
2: अंडर 5 बी दे ऑल किड्स फ्री, सॉरी.
1: या या, अंडर द एज ऑफ 5 एंट्री फ्री है.
0: राइट, सो अंडर द एज ऑफ 5 अगर आपके बच्चे हैं तो उनको तो आप लेकर ही जाइए घसीट के. नहीं पता करो, बट नहीं, समटाइम्स क्या होता है मालूम है क्या, वी डोंट नो व्हाट वी लाइक. And this is, some things have to be forced onto us. And this is one such event that I think should be forced onto children because it is so important.
1: जब तक दिखाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि this is their interest.
0: And it is like music. We all like, you know, music has got so much power. And when it's jammed up with bhajans and kirtans, I think it's just. हम लोग रेडियोथॉन के टाइम पे भी करते हैं ना काफी बार कीर्तन और भजन, और इट्स गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी टू इट. सो रविदेश, विश यू ऑल द बेस्ट बडी, विश यू ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू रविदेश.
2: थैंक यू. होप यू गाइस यू विल कम.
0: या फॉर श्योर मैन.
1: थैंक यू.
0: थैंक्स मैन.
2: ओके.
1: चीयर्स. बाय
0: बाय.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats?
7: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
8: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Make your space your own for less at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
12: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
13: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
14: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
13: तो क्या करें?
16: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
17: This is a big one. Save up to $16,000 across the LDV Ute range. The biggest LDV sale yet is on now. LDV, helping Kiwis work harder every day. LDV distribution arrangements in New Zealand are subject to change. See ldv.co.nz for important information.
18: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
19: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
20: Kundi khad rao, ya seedha andar aao.
21: Main laao apna A game.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आस्था गिल एंड सचिन जिगर दिव्या की आवाज में आप सुन रहे थे ये बढ़िया सा गाना कमरिया। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप एशियन फैमिली सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। रीच एंड रीच आउट इनका नया नेशनल कैंपेन ये शुरू हो गया है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन है जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको मदद की ज़रूरत है या आपके किसी जानने वालों को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर आप 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें।
1: या एंड जहाँ पे आपको और भी डिटेल्स जो है ये एक्चुअली में आपको मिलने वाली है। रिमेंबर हम बोर्डिंग कॉल आपके लिए यहाँ पे ये कंपटीशन है, 5 बजे के बाद बोर्डिंग कॉल आपके लिए यहाँ पे प्ले होने वाली है। एंड जैसे ही बोर्डिंग कॉल आप सुनते हैं आपको रोवा ऐप पे जाना है। यू विल हैव 60 मिनट्स बोर्डिंग कॉल सुनने के बाद रोवा ऐप पे जाइए, वहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल के कॉम्पिटिशन पेज पर क्लिक कीजिए एंड 5 बजे के आगे बोर्ड नाउ आपको लिखना है और सबमिट क्लिक करना है। दैट्स इट। सो आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। विद आप 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू जी सकते हैं विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल। सो अगर आपको कंपटीशन पेज का लिंक चाहिए तो आप BC लिख के भेजिए 5599 पर, अभी आपको लिंक मिल जाएगा। बट यस, हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू। विजिट flysolomons.com।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
5: Accurate traffic.
6: City Rail Link opening soon.
7: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, pretty good at the moment. The northwestern's a bit slower heading west through Rosebank. On the southern, from town to Manukau, 38 minutes. Drury in hour 3. It's heavy heading south at Newmarket to Mount Wellington and north from there to Green Lane. The southwestern's slow in both directions through Mangere Bridge and pretty heavy from Pukenui Road to the southern.
6: The new City Rail Link is opening September 13. All aboard, Auckland.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
10: So, you and the boys have that mildly inappropriate, actually very inappropriate group chat. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma, save lives.
11: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
12: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.go.nz.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
13: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers 149, American Standard Toilet Suite 349, Luxury Clashish Wall Vanities 399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: Happy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super se upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: Let's go.
1: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: आप सुन रहे हैं हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे अभी सैंडी रिकमेंडेशंस की बात हो रही है और आप में से ऑफर

0: यहाँ पे उनके आर्टिस्ट के गाने हमने कई बार यहाँ पे प्ले किए हैं, जैसे कि MC Square जीता था कि वो रनर अप था,
1: जीता था ना,
0: जीता था वो।
1: हम लोग श्वेता तावड़े के भी, श्वेता नहीं क्या, श्वेता तावड़े ना,
0: सृष्टि
1: सॉरी सृष्टि तावड़े,
0: उसके गाने भी प्ले करते
1: हैं, प्ले करते हम लोग।
0: एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनके पैराडॉक्स या उसका
1: बट हसल फाइव में वो हरमीत करके एक बंदा है,
0: हरमीत छा रहा है भाई,
1: या हरमीत इज भोपाल से है वो, बट ही इज अमेजिंग।
0: थोड़ा सा अगर बिट सुनाना चाहोगे तो यहाँ पे हम सुना सकते हैं, बट या यहाँ पे टीम्स बनी हुई है, हर टीम जो है अपने में यू नो सेलेक्ट करते हैं कॉन्टेस्टेंट्स को, सो दे आर क्वाइट, MC Square भी है, पैराडॉक्स भी है, एंड EPR Rebel जो कि फ्रॉम बिहार, दैट गाय इज देयर, एंड ऑफ कोर्स
1: ये लोग सब गैंग लीडर्स हैं, ये सब
0: गैंग लीडर्स हैं।
1: अच्छा,
0: सो दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो आपको थोड़ा सा हम सुनाते हैं दिस गाय, कौन सा वाला सुना रहे हो?
2: पता है क्या लगता था?
1: झूठ,
0: हरमीत का झूठ।
2: तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: ये गाना जो है ना ही मेड ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन हम बोल देते हैं कि यार टाइम नहीं था मेरे पास ये करने का वो करने का लेकिन आलस था एक्चुअली में झूठ था एक्चुअली
1: और मेरे को लग रहा है काफी लोग इस चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं
0: या ऐसी रैप बैटल्स आप बहुत देखेंगे हसल फाइव में

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल. आज थोड़ी बहुत क्लाउडी है पीरियड, शावर्स भी हो सकते इधर उधर, लेकिन ओवर द वीकेंड इज गोइंग टू बी मिला जुला सा वेदर. संडे को इट इज लुकिंग ऑल राइट, इट्स बारिश होने वाली एक्चुअली थोड़ी बहुत. ओवर नाइट आज टेम्परेचर रहेगा एज लो एज 9 डिग्रीज.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paal denge.
4: 5:03, Power Drive at 5 aapke liye yahan pe shuru ho gaya. Good evening, welcome to the show. Kaise ho aap?
5: A very very good evening, Rizbe, and good evening guys. Aapka hafta kaisa gaya? Pura ka pura week, how was it? Agar wrap up karna ho aapko ek shabd mein.
4: But aaj hum unko bolenge call karne ko. मालूम है बहुत टफ है लेकिन हमें हम जब बाहर जाते तो हमें काफी लोग बोलते हैं कि अरे हम सुनते हैं लेकिन हम कभी कॉल नहीं करते हम सुनते हैं लेकिन हम कभी कॉल नहीं करते
5: पैसिव लिसनर्स
4: सो आज मुझे चाहिए कि आज वो आप कॉल करो जो हमेशा जब मिलते हैं ना तो ये डायलॉग बोलते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन हम कॉल नहीं करते आज आप कॉल करो 0800-004-866 कॉल कीजिए नाम मत बताइए चाहिए तो बट आज सिर्फ आप कॉल कीजिए और हमें सैंडी को बताइए कि कैसा था आपका वीक सिंपल क्वेश्चन है ना
5: कि कैसा आपका हफ्ता गया
4: एंड मोस्ट कॉमन बिजी
5: बिजी क्या या कुछ भी
4: मोस्ट कॉमन हो सकता है ना ये या फिर आप बताइए कैसा
5: कुछ अचीव किया होगा किसी ने कुछ भी हुआ होगा कुछ स्पेशल भी हो सकता है ये हफ्ता
4: स्पेशल अगर हुआ है इस हफ्ते आपके साथ
5: या आप वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे
4: खर्चा अगर आपने किया हो कुछ हो यू नो काफी कुछ होता है
5: खर्चा कुछ नया आपने या खरीदा हो आपने उसके बारे में भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं तुम्हारा पूरा हफ्ता कैसा गया
4: मेरा पूरा हफ्ता आके चला गया मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं
5: टाटा बाय बाय हो गया
4: इट इज नाइस इट्स बीन गुड या आई थिंक आई डोंट नो या काफी डीप क्वेश्चन है ये या मैं बेमतलब का डीप कर देता हूँ हर एक क्वेश्चन को
5: मुझे भी ऐसा लगता है बट मेरा हफ्ता बहुत बिजी इज द वर्ड एक्चुअली बहुत ऑक्यूपाइड गया
4: आपका वर्ड
5: या
4: किस चीज से ऑक्यूपाइड गया सैंडी
5: विद द वेरियस थिंग्स लाइक डे टाइम भी इवनिंग्स भी बहुत ऑक्यूपाइड थी लाइक various events oh khadi yeah, beyond right. border bhi to maine attend
4: oh,
5: kiya tha
4: oh ji yes khadi
5: wo
4: beyond border
5: that was really nice actually
4: beyond border sorry khadi beyond border ki aapne do teen podcast shoot kiye is hafte
5: podcast
4: do din podcast bhi shoot kiye acha
5: ha kya alag ha mujhe laga khadi beyond border
4: nahi nahi wo nahi aur plus ore yaar ye week actually bahut busy gaya
5: yeah
4: kafi
5: we recorded guys aise do podcast humne record kiye hain ऐसा टॉपिक हमने एक रिकॉर्ड किया है जो बहुत ही रेलेवेंट है और जिसके बारे में हार्डली हाउस होल्ड में बात होती है ये आपके साथ हम अगले हफ्ते रिलीज करने वाले हैं सो उस टॉपिक के ऊपर ना बात हमारे घर पे अगर कोई करता है तो मे बी उसे बैड लक बोल दिया जाता है कि ऐसे नहीं बोलते और उस टॉपिक के ऊपर हमने पॉडकास्ट किया है विच इज़ लाइक हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो
4: आज के दिन अब हम खेलने वाले आपके साथ आज कनेक्ट द डॉट्स सो थोड़ी देर में कनेक्ट द डॉट्स के लिए आप रेडी हो जाइए
5: वो भी एंड रक्षाबंधन के कॉम्पिटिशन में
4: भी होने वाला है
5: उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए भी स्टे ट्यून बोर्डिंग कॉल कभी भी प्ले हो सकता है तो उसके लिए भी सुनते रहिएगा
4: अभी मैसेज आया एक सैंडी हमारे पास रोशनी इज वीक एंड फॉरवर्ड्स आई नीड अ कॉफी ये रोशनी को कॉफी पीना अलाउड है क्या लेकिन
5: क्यों नहीं अलाउड है
4: अरे बच्चों को अलाउड होता है क्या कॉफी पीना रोशनी यू शुड ड्रिंक बॉर्नविटा आई हैड अ टेस्ट लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड स्टफ Very tiring and long. Oh, wait until you get to work. Megha was sick and I woke up sick today, but she got an award today. Oh, kya baat
5: hai. Congratulations,
4: Megha. Sapna, aapke baare mein bhi likh lete to maza aa jata yaar.
5: Usse likha na, I had test and lots of tests and stuff.
4: Ye wo Roshni ke liye.
5: Oh, ye Roshni ke liye. Okay.
4: Sapna kaun sa test degi?
5: Wo dusra test ho sakta hai.
4: Ho sakta hai.
5: Yeah.

0: अनफॉरगेटेबल मूवी भूत बंगला से आप सुन रहे थे ये गाना राम जी आके भला करेंगे, अरमान मलिक की आवाज में, ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आज आपके लिए अब मौका दे रहे हैं हम यहाँ पे कॉल करने का और पार्टिसिपेट करने के लिए इन रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन, जहाँ पे दो लोग जीत सकते हैं $250 कैश।
1: Yes, and लेकिन उससे पहले रुजबे जब तक आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं 0800 हम पर एक आर्टिकल शेयर करती हूँ।
0: हाँ हाँ करो ना।
1: सो एक राउंड अबाउट बनाया गया यहाँ पे जहाँ पे बसेस को थोड़ा वो करना था इन्होंने कि उनका थोड़ा सॉर्टेड करना था कि राउंड अबाउट पे कई बार बसेस को बड़ा ट्रेवल होता है अड़चन होती है बेसिकली डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है
0: वो राउंड अबाउट के ऊपर से चलानी पड़ती है उनको फिर।
1: या तो एक न्यू राउंड अबाउट बनाया लेकिन ये न्यू राउंड अबाउट बनाने के बाद उनको ज्यादा स्ट्रगल हो गई बसेस को।
0: अच्छा
1: दे हैव टू मतलब बेसिकली उसको सेफर टर्न करने के लिए अब उनको ज्यादा स्ट्रगल हो रही है जो बसेस की सेफ्टी के लिए राउंड अबाउट बनाया गया है अब वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो चुका है। सो द प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो बनाया है वो इटसेल्फ प्रॉब्लम हो चुका है
0: क्योंकि जिसने सॉल्यूशन बनाया है वो खुद बस नहीं चलाता था कभी।
1: मेबी वो भी सकता है इसके ऊपर
0: तो उनको पता ही नहीं था कि वो क्या। ऐसा काफी बार होता है सैंडी कि जिंदगी में सॉल्यूशंस वो लोग क्रिएट कर रहे जिनको आइडिया ही नहीं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में, क्योंकि जिन्होंने कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया है।
1: या दिस इज एन ओटाहू बेसिकली ये जो राउंड अबाउट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेडी रोड एंड प्रिंसेस स्ट्रीट ईस्ट वहाँ पे है तो वहाँ पे कुछ कैमराज है जिन्होंने कि चेक किया है कि जो बसेज है एक ही टेक में नहीं जा पा रही है।
0: अच्छा तो रिवर्स लेके जाना पड़ रहा है उनको
1: स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको बेसिकली।
0: ओह नो
1: ये पंगा हो गया। सो इट्स नॉट रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इफ यू बीन देयर और आपने कभी ऐसा देखा है और या फिर अगर आप बस चलाते हैं बस ड्राइवर हैं और आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो आप शेयर कीजिए यहाँ पे इसके बारे में। स्पेशली दिस इज इन ओटाहो।
0: व्हाट आर द अदर वेरी ट्रिकी राउंड अबाउट्स जो आपको बहुत दिक्कत देते हैं? मेरे को एक राउंड अबाउट बहुत दिक्कत देता है।
1: कौन सा?
0: वो है यूनिवर्सल ड्राइव, वेस्ट ऑकलैंड का बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल ड्राइव एंड वो जो डॉनबक वो वाला है ना जहाँ पे एक साइड पे रानुई आता है फिर एक साइड पे।
1: यस यस वो जो कि रेलवे स्टेशन के
0: वो
1: पास
0: वाला
1: है।
0: नहीं नहीं वो वाला नहीं, मेन वाला यूनिवर्सल ड्राइव वाला राउंड अबाउट टुवर्ड्स द एंड जहाँ पे राइट मार के फिर आप डॉनबक रोड पे जाते हो। वो वाला राउंड अबाउट मेरे को एक साइड से बहुत ट्रिकी लगता है क्योंकि
1: मेरे को ट्रिकी वो लगता है या वो ग्रीन लेन में है ना जो
0: रॉयल ओक
1: हाँ
0: वो तो सबसे बड़ा राउंड अबाउट है
1: वो जो है मतलब उसमें तो अगर तो आप खड़े होगे तो खड़े ही रह जाओगे वहाँ पे बिजीएस्ट टाइम पे। सो मेरे को वो बहुत ट्रिकी लगता है
0: क्योंकि वहाँ पे हर जगह से आ रहे हैं ना बहुत सारे एग्जिट
1: बहुत ज्यादा है उसमें
0: बहुत एग्जिट है वहाँ पे। सो डिपेंड करता है आप कौन से एग्जिट पे हो।
1: या
0: इट कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी
1: एज वेल। आपको कौन सा राउंड अबाउट यहाँ पे बहुत ट्रिकी लगता है आप यहाँ पे शेयर कीजिए 0800 हम पर। राउंड अबाउट ट्रिकी होता है और मुझे कभी कभी लगता है कि पेडेस्ट्रियंस कई बार टू क्लोज राउंड अबाउट के जो बना देते हैं वो भी काफी ट्रिकी हो जाता है।
0: पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ना
1: या
0: हाँ कि राउंड अबाउट से निकलते ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो रहा है
1: तो आपको आधे रास्ते में रुकना पड़ता है।
0: जी जी
1: वो मुझे ना स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में नहीं आता। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसी ही है कि राउंड अबाउट के बिल्कुल पास पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई गई है एंड दिस इज वेरी कॉमन। एंड मैं तो इनफैक्ट यहीं पे देखती हूँ यहाँ पे विक्टोरिया स्ट्रीट पे भी इट्स नॉट अ राउंड अबाउट दो लेकिन वो यूनियन स्ट्रीट का जब हम वो टर्न लेने लगते हैं राइट टर्न लेते हैं तो राइट टर्न लेते ही वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो मतलब आप सामने वाली गाड़ी आ रहे उससे बचोगे या फिर पेडेस्ट्रियन को जाने दोगे वो भी बहुत ट्रिकी लगता है।
0: और आप सोचो मैं सैंडी के साथ जाता हूँ तो सोचो अगर सैंडी को ट्रिकी लग रहा है और वो गाड़ी चला रही है मेरे को कितना ट्रिकी फील हो रहा है गाड़ी में बैठे बैठे हनुमान चालीसा चालू शुरू हो जाता है मेरा।
1: अच्छा तभी तुम चुप बोलते हो
0: तो फिर मैं मन में प्रे करता रहता हूँ कि प्लीज आज बचा देना सॉरी फॉर ऑल द पाप्स आई हैव डन
1: एवरी डे माफी मांगता है ये।
0: किसी ने बोला यहाँ पे स्पेगेटी जंक्शन पे उनको बहुत स्पेगेटी जंक्शन
1: ये कहाँ पे है?
0: स्पेगेटी जंक्शन यार जो वो मोटरवे जहाँ पे सारे मोटरवे ऊपर नीचे जाते हैं ना।
1: ओके ओके
0: मिडिल मोर हॉस्पिटल राउंड अबाउट रोनल बोल रहे वो उनको बहुत ट्रिकी लगता है। राइट आप यहाँ पे बताइए
1: या कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं 0800 हम पर। रक्षाबंधन के लिए तो अभी तक कोई कॉल आया नहीं है इसी के बारे में शेयर कर सकते हैं
0: जी।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम आज ड्राइव शो में, because it's Friday, we are bringing you the segment which is called Clock It or Block It.
1: Clock It or Block It. So अगर आपने कभी miss किया है ये segment, कभी नहीं सुना है, बहुत simple है. Clock It का मतलब है कि yes you accept, you will do it, मतलब yes. एंड ब्लॉक इट का मतलब है कि नहीं करेंगे आप, जैसे ब्लॉक का मतलब होता है तो वैसे आप, ठीक है
0: right.
1: तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं क्लॉक इट ब्लॉक इट के, और आपसे भी हम सवाल पूछ सकते हैं क्लॉक इट ब्लॉक इट के. फिलहाल रुजबे के साथ खेल रही हूँ,
0: yes,
1: तो यू कैन कॉल ऑन 0800 00 हम 0800 00 4866. सो रुजबे, क्लॉक इट और ब्लॉक इट?
0: आई एम रेडी.
1: ओके, वॉचिंग अ टीवी सीरीज इन वन वीकेंड, binge watching basically.
0: I think clock it.
1: Clock it. Okay, taking the stairs instead of lift.
0: Taking the stairs instead of lift. Clock it, clock it, clock it. Okay. Yes, yes. Ek minute, Sandy. Next question. I think we can get our listeners over here. Hi, aapka swagat hai.
2: Hi.
0: Kya naam
2: hai
0: aapka?
2: Thank you. Mittal.
0: Are you ready, Mittal, to play with us? Clock it or block it?
1: रिकॉर्डिंग अ कॉन्सर्ट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट, ब्लॉक इट?
2: हाँ जी.
0: तो okay. कॉन्सर्ट में आप कभी कैमरा नहीं निकालते हो बाहर?
2: नहीं, सिर्फ थोड़ा शो ऑफ करने के लिए निकालती हूँ, बट पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड करने का, और ऐसा सिर्फ एक दो
0: सब कुछ
1: हम थे, हमने पूरा शो देखा है.
0: और ये बहुत बढ़िया सेगमेंट था, ये तुमने मिस कर दिया.
1: एनीवे, व्हाट अबाउट यू रुजबे, रिकॉर्डिंग अ कॉन्सर्ट इंस्टेड ऑफ
0: Block it, block it. But I would like, जो भी रिकॉर्ड कर रहा है प्लीज टैग कर दो.
1: Okay, Mittal, आपके लिए next question है. Staying friends with an ex. Clock it or block it?
2: Clock it.
1: Clock it.
0: Clock it.
2: Rizbe? Still be friends. That's okay.
1: What about you, Rizbe?
0: Yeah, clock it, but block it.
1: धर्म संकट में रुजबे दिखाई दे रहा है समय पर.
0: नहीं, मैं honestly, I am friends with my ex. That's not a problem. Yeah. But मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि friends would be an overstatement. I think acquaintance would be a better word for me.
1: Yeah. So block it.
0: Yeah, because I don't know. Yeah, maybe.
1: Yeah, anyway.
0: Depends, okay. I think. Har kisi ka apna life situation. It's block it for you or clock it for you?
2: Clock it.
0: Na? Okay. So, aap ho aapke ex ke touch mein ho abhi bhi.
2: Haan.
0: Achha.
1: Zyada nahi puchne ka Rizbe, ho gaya.
0: Kya baatein hoti hai fir matlab aise?
1: Are.
2: Zyada nahi puchne ka.
1: Yeah.
0: Achha.
1: So, Mittal, your next question is reusing takeaway containers.
0: अरे क्लॉक इट,
2: क्लॉक इट, क्लॉक इट, 100%
0: क्लॉक इट यार. अगर वो ब्लॉक कर दिया तो वी आर नॉट इंडियंस एनीमोर.
1: या दैट्स अ साइन.
0: या
1: एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीपिंग योर कैमरा ऑफ ड्यूरिंग द ऑनलाइन मीटिंग्स. आपकी होती है ऑनलाइन मीटिंग्स?
2: अभी नहीं होती है, मेरी पहली जॉब में होती थी.
1: या
2: कैमरा मैम, अगर वर्क फ्रॉम होम है देन
0: जब अगर कैमरा ऑफ है ना तो मैं खुद भी बहुत डिस्ट्रेक्टेड हूँ, तो मेरा ध्यान कहीं और ही जाता है फिर. उससे अच्छा मैं कैमरा ऑन में हूँ तो मेरा ध्यान है खुद पे, तो
1: इधर. But thank you so much, Mittal, participate karne ke liye.
2: No worries. Thanks.
1: Good one. Thank you.
0: Thank you.
1: So, agar kisi aur ko participate karna hai isme, ya fir humse sawal puchna hai clock it block it ka, wo bhi kar sakte hain.
0: Yeah, you can give us a call 0800 00 4866. Abhi ke liye ek bahut hi my favorite song main sunane wala hu aapko, one of my favorite songs. Can you guess Sandy which song? Pad liya apne. Power Drive at 5. Brought
3: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
1: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
0: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
1: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
0: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
1: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
2: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
3: Rebels taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebels Sport. See online for T's and C's.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: things using AI. तो ऐसे ही कंपटीशन अपने लिसनर्स के लिए हम लेके आए हैं दिस फादर्स डे. तो फादर्स डे आने वाला है, सो फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर इज़ अ फादर्स डे. तो कंपटीशन हमने दो आज आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं. जो ये जो सेकंड कंपटीशन है, इसमें आपको करना क्या है, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे हमने एक एआई जनरेटेड फ़ोटो ही डाली है. सो एआई जनरेटेड फादर्स डे की हमने फ़ोटो डाली है वहाँ पे. सो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू टर्न अ फोटो ऑफ योर डैड इनटू एआई जनरेटेड सुपर हीरो. ये आपको करना है.
1: सो इफ यू हैड टू मेक योर डैड इनटू अ सुपर हीरो, तो
0: एआई जनरेट करके आपको वहां पे कमेंट सेक्शन में यू आर फुल ऑन यूजिंग, क्या प्रॉम्प्ट आप वहां पे दोगे. सो बेसिकली आपको करना क्या है वहां पे, उस हमने खुद ही एक एआई जनरेटेड फोटो वहां पे क्रिएट की है, उसके कमेंट सेक्शन में आपको वो फोटो डालनी है. टैग योर डैड इफ योर डैड इज ऑन द सोशल मीडिया एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो एंड द कॉम्पिटिशन पोस्ट एज वेल. सो रिमेंबर, आप जिनको भी बोल रहे हैं वो फोटो लाइक करने के लिए, दे हैव टू फॉलो द हम फेसबुक पेज एंड दैट्स द वन कंडीशन एंड लाइक द कंपटीशन पोस्ट एज वेल.
1: $300 कैश आपके नाम हो सकता है,
0: ये आपके नाम हो सकता है. नाउ यू कैन डू एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, आप वहां पे दिखाना चाहते हो कि आपके जो डैड है वो DIY में बहुत अच्छे हैं, तब की डैड की फोटो डालो.
1: DIY सुपर हीरो बन सकते हैं,
0: DIY सुपर हीरो बन सकते हैं. आपके डैड जो है वो ड्राइविंग में बहुत अच्छे हैं, आपके डैड कुकिंग में बहुत अच्छे हैं.
1: राइट,
0: सो यू नो यू कैन जनरेट दोस काइंड ऑफ, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू कैन.
1: राइट,
0: सो दिस इज लाइक स्पेशल सेगमेंट.
1: कोई कॉल कर रहा है, हमें उनसे बात करते हैं. हाय,
2: हेलो रुजबे, हाउ आर यू?
1: वेरी गुड, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका?
2: माय नेम इज गुंजन.
1: गुंजन, बताइए गुंजन, क्या कहना चाहेंगे आज?
2: राइट, आई वांट टू आस्क यू, यू नो यू सेड लाइक क्लॉक इन एंड ब्लॉक इट, सो आई वांट आस्क यू वन क्वेश्चन.
1: अच्छा, ओके, पूछो ना.
2: ओनली इफ यू, इफ इट्स, सो आई वांट टू आस्क यू लाइक बाइंग एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑन योर वाइफ्स बर्थडे,
1: क्लॉक इट ब्रो, क्लॉक इट ऑब्वियसली.
0: अभी कैसे रुजबे तुम बोल रहे हो?
2: अभी हैव टू बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट देन.
1: अभी भाई आपका आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही गलत टाइम पे आ गया ना.
0: गलत टाइम नहीं, सही टाइम पे है, बिकॉज़ हिज वाइफ इज इन द स्टूडियो राइट नाउ.
1: माय वाइफ इज इन द स्टूडियो राइट नाउ. हाय नुशीन, वेलकम टू द शो यार.
2: That's why I wanted to trick you, you know, like, in both way, you know, if you say block it, then only God can save you. And if you say clock it, then, you know, you have to.
0: So, Gunjo ne question pucha. Nushin is in the studio. Hi, Nushin.
3: Hello. Hello.
1: Hi. Yeah.
0: So, Nushin, yahan pe Gunjo ne question pucha hai Ruzbe se, ki buy expensive gift for your wife, clock it or block it. Agar tum yahan pe nahi hoti, to Ruzbe ka kya answer hota?
3: नहीं, वो खर्चा करता है, बर्थडे पे तो करता है, एक दिन पे करता है,
0: एक दिन करता है ना.
1: देखा क्या बात है यार.
0: सो गुंजन, वन डे के लिए यस.
1: बट गुंजन, आई विल से समथिंग. सी, यू नो, I don't believe in expensive gifts. Like in receiving them also and giving them also, because the most expensive thing for me is my wife's love.
0: It's so cheesy.
2: I hope all girls agree to that, because my wife, she loves expensive gift, man.
3: You're not understanding. For him, okay. I don't need to buy a gift. He loves me, no? So my love is enough for him.
1: और वही उम्मीद रहेगी, वही कोशिश रहेगी कि किसी दिन वो भी उनको भी ना चाहे, वो भी ना चाहे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, और उनके लिए बस हमारा प्यार ही काफी हो. बट अ मैन कैन ड्रीम.
2: One day after 100 years.
1: After 100 years. आपके वाइफ के लिए आप लेकर जाते हो गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट.
0: What is you? What is like? Is it clock it and block it for you?
1: वो block it ही है, लेकिन वो clock करना पड़ता है.
2: I have to clock it. I can't block it. Otherwise he'll block me.
1: So what is?
2: नहीं, अभी मेरी वाइफ का बर्थडे गया, that's why I just thought of, you know.
1: अच्छा, क्या दिया आपने आपकी वाइफ को?
2: I bought her a iPhone.
1: Oh.
2: 17 Pro Max.
1: Okay, can't hear you, bro. Can't hear you. Okay.
3: Thank you, Gunjan ji. This could be my next gift.
0: Yeah.
1: Thanks for calling, man.
0: Thanks, Gunjan, okay, for playing this game. Bye. Thank you. Bye-bye.
1: यार क्यों ही आंसर किया मैंने ना इसका कॉल.
0: अरे तो इम्पोर्टेंट था. पावर ड्राइव एट 5 ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन. थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: 6:03 हुए हैं. You're listening to Trend Makers. Good evening. फ्राइडे स्पेशल ड्राइव शो में आपका स्वागत है.
5: यस, और आज की हमारी थीम है डिस्को गाने.
4: डिस्को स्टेशन डिस्को.
5: किसका गाना था ये?
4: डिस्को 82.
5: किसका था ये?
4: मेरे को नहीं आईडिया. डिस्को स्टेशन.
5: Yeah. But I was reading actually about disco and वैसे नुशीन भी है हमारे साथ यहाँ पे आज as a special guest because we are talking about disco over here. नुशीन, तुम्हें disco के बारे में how much you know about disco? Not Bollywood disco, like
4: Seti.
5: As in disco.
6: Hi.
4: Spelling तो आता है. अच्छा. I know, but what is your exposure to disco? Like when did you hear about disco? When was the first time you went to a discotheque?
6: Oh, no. I don't think you want to reveal that information to your...
5: ये सवाल नहीं यहाँ पे पूछने हैं.
4: नहीं, बट मेरे को एक सवाल, मेरे को एक पूछना है कि याद है हमारे टाइम पे होता था डिस्कोटेक, मतलब वो ऐसा, फिर बाद में क्लबिंग शुरू हो गया, क्लब्स.
5: डिस्को कन्वर्टेड टू क्लब.
4: तो डिस्को और क्लब्स के में क्या फर्क है?
5: That's a good question. अगर किसी को पता है तो कॉल करके बताओ. I think many DJs out there must know this.
4: हाँ यार,
5: what is the difference between disco and club?
4: 004866 नंबर है यहाँ पे, अगर आप कॉल करके हमें बता सकते हो कि डिस्को पहले हमेशा बोलते हैं कि चलो डिस्क चलते हैं, डिस्क डिस्को, और अभी फिर वो क्लबिंग हो गया न्यूजीलैंड में आके.
5: I think it's also about the dance form. डिस्को में फिर वो डिस्को गाने और डिस्को डांस कुछ ऐसा रहेगा. And in clubbing, it's
4: disco में मेरे को लग रहा है वो बीच में वो गोल एक अंडा होता है ना, वो disco ball, shiny disco ball.
6: So it's called a discotheque, guys.
4: हाँ वही discotheque ना, वही बोल रहा हूँ मैं. मैं discotheque ही शुरू किया, तू सुन रही नहीं है क्या?
6: नहीं.
4: घर पे भी नहीं सुनती, यहाँ पे भी नहीं सुनती, क्या है यार? कहीं तो कुछ और कर.
5: Not really, Rizbe.
4: अरे joke है.
5: Yeah, I don't think so. ये अच्छा जाएगा.
4: अच्छा नहीं जाएगा.
5: Weekend है, तुम्हें realize हो रहा है.
4: That's good point. No. Yeah, this is the radio, Rizbe. Okay, it's not your husband, Rizbe, talking. All right. तो हाँ बताइए.
5: So yeah, disco के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे. So disco Bollywood में बहुत late आया actually में in 1970s. सो 60s 70s में पहले कैबरे का टाइम था, जब कैबरे की एंट्री है, पिया तू अब तो आ जा, दुनिया में लोगों को, ऑल दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो है ये कैबरे सॉन्ग्स है. बट डिस्को हिट mid 1970s एक्चुअली में.
4: एंड वो नाजिया हसन कहीं का नाम आ रहा है बीच में,
5: वो आया 80s में. रुज़बे
4: 80s में, यस.
5: 70s में इट वाज आरडी बर्मन के स्कोर थे, जैसे ये मेरा दिल डॉन मूवी से, देन यादों की बारात में, आपके कमरे में.
4: आपके कमरे में
5: गाने का नाम है.
4: अच्छा.
5: सो ये गाने थे जो वहाँ पे डिस्को थीम थी. देन कुर्बानी मूवी में इट वॉज नाजिया हसन जिसमें वो गाना था आप जैसा कोई.
4: दैट्स राइट.
5: या इट बिकेम मैसिव हिट.
4: So, आज थोड़ा बहुत मतलब डिस्को वाले गाने आपको सुनाएंगे और थोड़ी बहुत बातें भी,
5: डिस्को थीम वाले गाने आपको सुनाएंगे.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे ट्रेंड मेकर्स में आज डिस्को थीम लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे डिस्को सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं. वैसे हमारे टाइम का, मतलब हमारे पहले के टाइम का जो मेन डिस्को के साथ एसोसिएटेड जो थे, वो उनका गाना आपने अभी सुना.
1: Yeah, मिथुन चक्रवर्ती. मतलब he was famous for this dance as well and this song as well.
0: Yeah, इसका recreated version अभी आप सुन रहे थे, Disco Dancer 2.0. But yeah, anyway, हम फिर भी
1: ये गाना Bappi Lahiri ने create किया था ना ये soundtrack.
0: Original was Bappi Lahiri.
1: Yeah.
0: But आज काफी सारे ऐसे covers भी आपको सुनने मिलेंगे जिसमें काफी disco वाला feel होगा.
1: Yeah, and आपके कोई memory है disco को लेके, disco songs को लेके, तो ये भी आप यहाँ पे जरूर share कर सकते हैं. You know, Disco Dancer ये जो गाना भी सुना, ये एक massive global blockbuster बन गया था रुजबे. So, ये सोवियत यूनियन में भी रिलीज हुआ था. So, making its highest grossing Indian film globally until 1994. तो उस समय पर ये जो गाना था, ये मूवी एक्चुअली काफ़ी हिट होगी बिकॉज ऑफ द सॉन्ग एज वेल.
0: राइट, मेरे को ना ऐसे लगा था कि डिस्को माइट बी एन अब्रीविएशन या एन एक्रोनिम फॉर समथिंग एल्स, लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है. वो बस एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर द फ्रेंच वर्ड डिस्कोथेक, जो हमें पता था. एंड इसका मतलब है रिकॉर्ड लाइब्रेरी. डिस्कोथेक का लिटरल मीनिंग है रिकॉर्ड लाइब्रेरी और अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स वर स्टोर्ड एंड प्लेड. एंड दैट्स व्हाई डिस्कोथेक केम अबाउट, कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारे गाने प्ले होंगे.
1: Yeah, wow, very
0: like a
1: nice,
0: record
1: yeah.
0: library, you know, it's like a library for music. जहाँ पे अलग-अलग गाने play होते हैं, and people then enjoy and dance on top of, you know.
1: So थोड़ी देर में हम बात करेंगे उन music directors के बारे में जो कि actually में disco themes use किया करते थे. उनमें से एक को disco king बोला जाता था. If you have any idea, disco king किसका नाम हो सकता है, किस music director का नाम हो सकता है, 5599 पर message कीजिए.

0: Show with Sandy and Rusby.
1: अरे राम माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे.
0: हम 80s के रेट्रो गाने.

0: या रॉक एंड रोल? Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
6: मोवर, टूल्स, बाइक्स या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? फाइंड शेड लोड्स एट माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन। गार्डन और लाइफस्टाइल शेड्स की ग्रेट रेंज के साथ अपना परफेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन सॉर्ट करें। आज ही बात कीजिए विद द टीम एट माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
9: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी? तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect है smoothies बनाने के लिए, tangy dips बनाने के लिए, पनीर या chicken marinate करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish natural yogurt.
11: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Trendmakers, आप सुन रहे हैं on Hum 104.2 FM पे और Rova App पे आप हमें सुन सकते हैं. And Rova App से आप हमें from anywhere in the world सुन सकते हैं.
13: और हमारे podcast भी आप Rova App पे जाके सुन सकते हैं. जहाँ पे हम बात करें म्यूजिक डायरेक्टर्स की, तो सवाल पूछा था कि डिस्को किंग किसको बोला जाता है.
12: एंड यस, बहुत सही आंसर्स यहाँ पे आए हैं. इट इज नन अदर देन पप्पी दा.
13: या पप्पी लहरी. सो ही डिड नॉट जस्ट कंपोज डिस्को म्यूजिक, ही बिल्ट एंटायर सब कल्चर अराउंड इट इन इंडिया.
12: आई थिंक बॉलीवुड में डिस्को इंट्रोड्यूस करने वाले पप्पी लहरी हो सकते हैं. मतलब लाइक नॉट इंट्रोड्यूस एज एन कॉमन मास लेवल पे डिस्को.
13: मास लेवल पे शुरुआत आरडी बर्मन ने की थी, बट देन ही कैरीड, वो एक स्टाइल आइकॉन बन गए थे इसके डिस्को थीम के. बट ही वाज ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय बोनी एम एंड यूरो डिस्को एक्ट थे उनके. एंड इटालियन प्रोड्यूसर जो थे एक जॉर्जियो, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. तो दैट्स हाउ अपने ट्रैक्स में, फॉर एग्जांपल वो अगर उनका वो गाना है, सैड सॉन्ग है, याद आ रहा है तेरा प्यार, उसमें भी वो डिस्को थीम ही लेके आए.
12: दैट्स राइट. या सो अलग अलग इसमें वो लेकर गए थे
13: या
12: डिस्को थीम को अलग जॉनर्स में.
13: या सो आरडी बर्मन एंड देन उषा उत्थप, ऑफ कोर्स शी वाज आल्सो द वोकल पावर हाउस.
12: हर वॉइस वाज सो एप्ट फॉर डिस्को काइंड वाले गाने, क्योंकि उनका रेंज बहुत सॉलिड था ना गाने का.
13: आशा भोसले, उषा उत्थप, ये दोनों के ऊपर डिस्को वाले गाने बहुत ज्यादा सूट करते थे.
12: वेल, लेट अस नो व्हाट्स योर फेवरेट डिस्को सॉन्ग एंड होपफुली यू वुड लिसन टू इट टुनाइट. तो 5599 पे आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk, street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
7: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
8: Traffic.
9: Got an unreliable outboard?
10: Cloudy overnight for Auckland with a low of 10. From town to Constellation Drive, 18 minutes to Silverdale, half an hour. Just heavy Esmond Road south to Oniwa. Northwestern is 16 minutes to Massey on the southern to Manukau 22 and Drury 32. It's just heavy heading north from Ellerslie Panmure to Green Lane. The southwestern's a bit slow north through Mangere Bridge. Town to the airport, 24 minutes.
11: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's fees and credit criteria apply.
12: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
13: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
12: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
13: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 098469934 और सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
0: Mower, tools, bikes, या फिर सब कुछ रखने के लिए space चाहिए? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden और lifestyle sheds की great range के साथ अपना perfect storage solution sort करें. आज ही बात कीजिए with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
14: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
15: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
16: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
17: Yes, but I want to subdivide too.
16: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
17: Really?
16: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
17: Zelo. I like the sound of that.
16: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
18: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आपके लिए। यहाँ पे हम आज गाने लेकर आ रहे हैं डिस्को थीम वाले, बिकॉज इट्स फ्राइडे, हमने बोला चलो इट्स द टाइम टू डिस्को, आई मीन लेट्स लिसन टू सम डिस्को सॉन्ग्स।
1: या अगर डिस्को के गाने उस समय काफी पॉपुलर थे लाइक 80s 90s में, बट आजकल डिस्को थीम के ऊपर ज्यादा गाने ओरिजिनल्स नहीं आते हैं। रीमेक डेफिनेटली हमने सुने हैं बट ओरिजिनल नहीं आते हैं रुस्बे। हाँ, कुछ कुछ गानों में उनका वो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स जो है, जो कि डिस्को में यूज़ होता है, वो ज़रूर होता है, जैसे कि तौबा तौबा में था, शेर खुल गए, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बट नॉट एग्जैक्टली डिस्को सॉन्ग्स।
0: या एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे थोड़ा बैकलैश हुआ था और डिस्को सक्स करके ऐसा कुछ बैकलैश क्रिएट हुआ था, जिसमें जो अमेरिकन रेडियो स्टेशन है वो एंटी डिस्को इवेंट्स को स्टेज कर रहे थे।
1: Oh, wow.
0: तो शिकागोज इनफेमस 1979 डिस्को डेमोलिशन नाइट, ये ऐसा भी हुआ था अक्रॉस पैसिफिक। सो काफी लोगों ने थोड़ा वो मतलब दे वर अगेंस्ट डिस्को एज वेल इन सम टाइम।
1: ओह वाओ, इंटरेस्टिंग।
0: इट वाज अ टाइम एट दैट टाइम आई थिंक कि मल्टीपल लाइक यू नो बैकलैश भी हो रहा था, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द साउंड्स हैव चेंज्ड नाउ। काफी अलग टाइप के साउंड्स, हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ ज्यादा मूव ऑन
1: करते
0: हैं, EDM की तरफ। सो या देयर हैव बीन अ लिटिल सिमिलैरिटीज बट लिटिल डिफरेंसेस एज वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक।
1: सो इसी नोट पे आपको यहाँ पे हम टाटा बाय बाय कहते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आपसे अब मुलाकात हमारी मंडे को होने वाली है, सोमवार को होने वाली है।
0: जी, अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ फैबुलस वीकेंड, वी विल सी यू वेरी सून। तब तक के लिए सुनते रहिए हम 24/7 आपके लिए, हम लेकर आते हैं एक से एक गाने। एंजॉय,
1: बाय।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey,

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rover app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
2: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
2: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe basin mixers $149. American Standard Toilet Suite $349. Luxury Clashish Wall Vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई टिफिन खुल गया छे संजना का डिब्बा खुल गया
7: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा डिब्बा खुल गया हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
5: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे ओनली ऑन हम
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
9: अब हमारा क्या होगा
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
8: तो क्या करें
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
4: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
5: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
6: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
7: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert. Indelible.

0: DJ Raw King.
1: Friday
2: Friday
3: Friday Night Rave.

0: myself into.
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का? और सलमान भाई? इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम,

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Non-stop Bollywood.
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
5: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अब. अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Professional Financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.

0: Night Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: लिंक को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited space.

0: कप वर सर्व्ड, तो देर मत कीजिए। कॉल 0800-46-26-26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: माँ, एक चपाती होती है ना?
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
4: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
3: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
4: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
3: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Budget gaane

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम। हाँ।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Playing Bollywood's biggest hit.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Playing Bollywood's biggest hits.

प्रमोशंस हमारे साथ में हम पर जारी है। ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा, बस साथ देते रहिए ऑन योर फेवरेट डायल हम। और देश में हैं आप, विदेश में हैं, रोबा के साथ में आप जुड़े हैं, वेलकम टू द शो। सैटरडे मॉर्निंग है ये, वीकेंड की आगाज़ है, ऐसे में मैं हूँ अभी आपके साथ में और आप भी अपना साथ हमारे साथ में बनाए रखें, बस इतना ही चाहते हैं आपसे।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और आपके साथ में आज का जो मौसम है इसका डिटेल शेयर कर लेता हूँ। जबकि आज है 22nd of August, तो ऐसे में सनराइज होगी 6:55 AM यानी कि 5 to 7 आप सनराइज देख सकेंगे। और मजे की बात यह है कि आज बहुत दिनों के बाद में मैं देख रहा हूँ कि सनराइज आज 7 बजे सुबह से पहले होगी। जैसे जैसे हम विंटर से दूर स्प्रिंग की ओर हेड कर रहे हैं, सो सनराइज विल बी हियर एलिया मच एलिया और ये सभी कुछ रहेगा। इसके अलावा जो आज दिन का टेम्परेचर रहेगा, खासकर ओकलैंड सीबीडी के लिए 16 डिग्रीज, यानी कि सुपर सिटी ओकलैंड के लिए बताए तो जनरली 16 डिग्रीज के करीब रहेगा। मिनिमम ओवरनाइट एट 9 डिग्रीज तक हो सकता है और इसके साथ साथ सनसेट एट 5:53 PM। और मौसम जो रहेगा आज के लिए मोस्टली क्लाउडी विद आइसोलेटेड मॉर्निंग शावर्स। इसके साथ में अगर जो नेशनली देखे तो और शहरों के लिए, टाउन्स के लिए, हैमिल्टन में भी आज ऐसा ही कुछ मौसम रहेगा। इसके साथ में तोरंगा, रोतोरुआ, इन सभी जगहों पर मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, यानी कि मिक्स्ड सा वेदर रहेगा। साउथ आइलैंड की ओर देखते हैं तो क्राइस्टचर्च में भी इसी तरह का वेदर, इसके साथ में क्वींसटाउन में भी सेम और इसके अलावा इनवकागिल तक ऐसा ही कुछ मौसम रहेगा। तो आज का कुछ प्लानिंग है आपका, वॉशिंग या लॉन्ड्री करना है तो ये सभी कुछ ध्यान में रखे हुए आप करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आज है 22nd of August, आप भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसका जो मैसेज है आप हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं ताकि यहाँ से ऑन एयर हम भी आपको विश कर सके। ये सभी कुछ हमारे साथ में है ऑन अ वेरी वेरी कूल मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, वीकेंड का मॉर्निंग है। ऐसे में आप भी जाग गए हैं, रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं और या फिर काम की ओर बढ़ रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चलाइएगा, हमारा साथ देते रहिएगा एंड कीप हमिंग।

0: आपको हम पर विश करते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि आज है 22nd of August। तो आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि ऐसे मौसम में, खासकर विंटर की मौसम में, काफ़ी प्रेशर हेल्थ सिस्टम पर पड़ रही है। जबकि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि फ्लू रिलेटेड काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, एंड इट्स एट अ 10-year high इन ओकलैंड। यानी कि बहुत सारे लोग अभी सर्दी और जुकाम का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे मौसम में ये होता भी है। तो हेल्थ न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेल ब्रेमली ने कहा है कि जो पूरा हेल्थ सिस्टम है, कहीं ना कहीं पूरा अंडर प्रेशर है, और इसके साथ में एक फ्रंट ये बैरल कर रहे हैं जहां पर ढेर सारे कॉल्स इनके पास में आ रहे हैं। दिन के कुछ 1000 से लेकर 1200 कॉल्स आते हैं सिर्फ इन्फ्लुएंजा को लेकर या फिर ऐसे वायरसेस को लेकर, और इसके साथ में कुछ COVID-19 के भी केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा आई, साथ में RSV और कोल्ड वायरसेस का जो केसेस है, ये हेल्थ न्यूजीलैंड चीफ एग्जीक्यूटिव डेल ब्रेमली ने बताया है कि ऐसे ऐसे केसेस इनके पास में आ रहे हैं। तो ऐसे मौसम में आप भी बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 2 से 3 लेयर्स आपको लगता है मौसम देख कर, टेम्परेचर देख कर कि आपको पहनना है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके बाहर निकलना है। इसके साथ में अगर जो आप हुडी लगाते हो सिर पर, देन इट्स इवन बेटर, क्योंकि जो मॉर्निंग में, खासकर इवनिंग में, ये आपको काफ़ी अफेक्ट करेगा। तो अपने आप का खुद से ही ध्यान रखिएगा, ताकि आप किसी बीमारी का शिकार ना हो, एंड यू कैन हैव अ एन्जॉयबल वीकेंड। और इसके साथ में कहीं ना कहीं आप अपने सिक लीव्स भी बचा कर रख सकते हैं। मैं हूँ अभी आपके साथ में, मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ कमिंग अप नेक्स्ट, आपके साथ में शेयर करता रहूँगा।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम हाँ।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
1: हम पर रवि का साथ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग। आपको भी हमारी ओर से अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जबकि आज है 22nd of August, तो आपको बता दूं कि भजन जेम्स आज होने को है एट 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापटोए ओकलैंड, जहां पर साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में NZ कल्चरल ट्रस्ट ये साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं भजन जेम्स, जिसको प्रेजेंट करेंगे रवि तेज देव अपने लाइव बैंड के साथ में। और यहां पर आपके लिए डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स को ये आपके लिए लाकर पेश करेंगे। ये सभी कुछ एक वाइब्रेंट लाइव कॉन्सर्ट सेटिंग एनवायरनमेंट में। अभी जो टिकट्स है $30 है और साथ में जो बच्चे हैं इनके लिए अंडर द एज ऑफ 5 एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं eventbrite.com, साथ में जेज फ्रेश पापटोए, वेली फ्रेश पापटोए और शिव प्रसाद केल्स्टन। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि कितने टिकट्स बाकी है, लेकिन अगर जो आप चाहते हैं तो eventbrite.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसा कॉन्सर्ट है जहाँ पर जितने भी प्रोसीड्स इकट्ठा होंगे ये सभी दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो एक ऐसा कार्य जहाँ पर आप भी जाकर अपना सहयोग पहुँचा सकते हैं।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, ये है Saturday Breakfast Show on Hum. मैं हूँ आपके साथ में आपका होस्ट अभी और साथ देता रहूँगा 12 तक. अभी जबकि 20 मिनट बाकी है सुबह के 7 बजने में, ऐसे में 7 पर शुरू होने जा रही है EPL का नया सीजन और इसमें आज जो सुबह पहला मैच है ये डिफेंडिंग चैंपियंस आर्सेनल और कोवेंट्री के बीच में. तो आप भी EPL फॉलो करते हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ और जबकि एक्साइटिंग है क्योंकि नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ऐसे में कई टीमों ने ऑफ सीज़न अपने अपने स्क्वाड्स को स्ट्रेंथन किया है. कुछ नए साइनिंग भी हुए हैं जिसके बारे में और भी डिटेल में आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन हियर्स टू द न्यू सीज़न. और आप भी अगर जो एक क्रेजी फैन हो EPL के, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो इसका भी जवाब आप भेज सकते हो या अपने टीम का नाम भेज सकते हो 5599 पर और ये सभी कुछ बातें आपके साथ में होती रहेंगी. आप भी अगर जो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आज 22nd अगस्त, इसकी खुशियां हमारे साथ में बांटना चाहते हो 5599 इज़ योर मैजिक नंबर.

0: यू लिसनिंग टू हम, मैं हूँ आपका साथी अवि, और आपके साथ में ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब सर्कमस्टांसेस बदलना मुश्किल हो, जब आपके लिए सर्कमस्टांसेस बदलना मुश्किल हो, तो ऐसे में अपना मन आप बदल सकते हो।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें। यह सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

अभी थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे कम्युनिटी न्यूज में क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है, इसके अलावा जनरली आज आप अपना दिन कैसे बिता सकते हैं, कौन से ऐसे फेस्टिविटीज है जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, इस पर और भी बातें बस थोड़ी देर में है। और साथ देते रहिए, जबकि 8 मिनट बाकी है 7 बजने में।

0: एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोट रूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.
3: Make your space your own for lease at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
4: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band.
5: Ram, Ram, bolo re.
4: Saturday, 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy, or Shu Prasad, Kelston.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all 4 weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
7: Get the Skinny!
8: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vaults, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure, and protected. Commonwealth Vaults, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvaults.co.nz.
9: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
10: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
9: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
10: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
9: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
11: Saturday breakfast on Hum.
13: Yo.
12: You're listening to Avineet.
14: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. सुबह के साथ बज रहे हैं, ऐसे में आप भी अपने पहले चाय की चुस्की का मज़ा ले रहे हैं या फिर रास्ते पर है, सफ़र कर रहे हैं, आपको खास याद करते हैं, आपको शामिल करते हैं. हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ ग्रेट मॉर्निंग. आपकी दिन आज के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल रहे. जो कुछ भी आपने सोचा है ये सभी कुछ आप अचीव करें. इसी के बाद इन्हीं बातों के साथ में आपका साथ दे रहा हूँ. 12 तक रहूँगा आपके साथ में, लेकिन इस हवा पर ढेर सारे और भी बातें आपके साथ में रहेंगी. ये पहला गाना आपके लिए पेश कर रहा हूँ. 5599 पर आप भी अपने ग्रीटिंग्स हमारे पास भेज सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है जिसे आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन हो या फिर शादी की सालगिरह हो, इसकी भी आप जो मैसेज है या फिर जो संदेश है हमारे पास में भेज सकते हैं 5599 पर.

0: जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं हूं आपका साथी. अभी आपकी भी सुबह हो गई है, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग हमारी ओर से. 5599 पर आप भी अपने गुड मॉर्निंग के जो मैसेजेस है हमारे पास में भेज सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले भाई कितने लोगों की सुबह हो गई है. और इसमें कम्युनिटी न्यूज़ में आपको बता दूँ, जबकि आज है 22nd, ऐसे में 22nd और 23rd अगस्त को बेकन हेड स्काउट्स हॉल में यहाँ पर जो कैरम का जो गेम है ये होने जा रहा है, जबकि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रही थी टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, अब ये आ भी गया है. ऐसे में मुझे मालूम नहीं कितने रजिस्ट्रेशन अभी बाकी हैं, आप कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं, लेकिन 0210908506 पर आप कॉल कर सकते हैं पंकज को. इसके साथ में अगर जो आर्ट ऑफ इंटरेस्ट आप इस गेम को जाकर देखना भी चाहते हैं तो बेकन हेड स्काउट्स हॉल जा सकते हैं. इसके लिए भी आप पंकज को कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितने बजे तक जो फिक्चर्स है ये आप जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा सिंडी और उज़्बे ने अनफिल्टर्ड में पंकज से ढेर सारी बातें की हैं इस गेम को लेकर. और अगर जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप इस गेम को टेकअप करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो CB लिखकर 5599 पर भेजे ताकि एपिसोड आपको मिले, ताकि आप रूल्स को भी समझ सके एंड ये जान सके क्या इंटरेस्टिंग है. और इसके अलावा जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसकी शुरुआत होने जा रही है नेक्स्ट वीकेंड से, सैटरडे 29th अगस्त से. ऐसे में आपके लिए कुछ जगहों पर इसे मनाया जाएगा. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मना रही है सैटरडे 29th अगस्त से लेकर फ्राइडे 4th सितंबर तक एट द केव, जहाँ पर आप जा सकते हैं एट 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाउ, ऑपोजिट वेयर हाउस है ये. यहाँ पर जो कथा है 7:30 PM से शुरू होगी. इसके साथ में रामकृष्ण मंदिर जो सिचुएटेड है 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनेकाउ में, आपके पास में यहाँ पर भी जाने का मौका है, जाकर शामिल हो सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में जो 29th अगस्त से लेकर फ्राइडे 4th सितंबर तक रहेगी. और यहाँ पर जो कथा है 7:30 PM से रहेगी 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनेकाउ में.

गिव लव अ चांस, बस यही आपको कुमार शानू और लता मंगेशकर गाकर बता रहे थे। और टेक्स्ट मैसेजेस पर देखते हैं तो प्लेटफॉर्म पर मॉर्निंग अभी भाई अजय आपका मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच, आपको भी इस मॉर्निंग की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जबकि आज है सैटरडे 22nd of August, तो मे दिस डे बी अ प्लेजेंट वन फॉर यू। इसके अलावा हमारे साथ में गुड मॉर्निंग अभी, नाइस प्रोग्राम क्वीन लिख रही हैं, थैंक यू सो मच क्वीन, इसी तरह से साथ देते रहें। यू टू हैव अ वंडरफुल डे, आप भी हमें सुन रहे हैं रोवा पर साथ में 104.2 FM पर, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है बिल्कुल आपके पास में है तो 5599 पर आप अपना जो मैसेज है हमारे पास में भेज सकते हैं। थोड़ा सा तकलीफ दीजिए अपने उंगलियों को, एक प्यारा सा मैसेज भेजिए हमारे पास में भेजिए। जबकि 7:16 हो चुके हैं और आपका साथ दे रहा हूँ सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में, ढेर सारी बातें और भी हैं आपके साथ में करने को। और इसके अलावा जो पहला आज का समाचार रहेगा 8:08 दिस मॉर्निंग आपके साथ में रहेगा, लेकिन उससे पहले और भी कुछ बातें आपके साथ में होती रहेंगी, कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी भी सुनेंगे।

हाँ शेयर खुल गए हैं और हमारे पास में एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है रोनल्ड वीटीएनजे टीम बोटनी और जीआई से। गुड मॉर्निंग अभी भाई, थैंक यू सो मच आपको भी रोनल्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं हमारी ओर से, हम की पूरी टीम की ओर से, हैव अ वंडरफुल डे। और जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो सीज़न है ये शुरू हो गया है, इसमें कुछ 15th मिनट में ही जाकर डिफेंडिंग चैम्पियंस आर्सेनल ने पहला गोल बना दिया है, जबकि काई हावर्ट्ज़ ने स्कोर किया है और इट जस्ट टुक 15 मिनट्स फॉर Arsenal to open the score sheet। इस पर जो results रहेंगी और भी जो updates आपके साथ में share करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपके साथ में बात करेंगे Harry और साथ में Meghan की American कहानी के बारे में, जो उनकी dream थी। लेकिन all of this coming up थोड़ी ही देर में, साथ देते रहिए

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: It's easy to see signage as a cost. The smart businesses see it as leverage. A clean, professional sign can bring in new customers every single day. If one extra job covers the investment, everything after that is upside. Speedy Signs design signage that builds credibility and drives action without ongoing fees. Ready for signage that pulls its weight? Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
0: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. Five-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoi. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
6: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Hum, playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast on Hum.
9: हम पर ब्रेकफास्ट शो लेकर हाजिर हूं मैं अभी आपके साथ में और जबकि आज है 22nd ऑफ अगस्त तो आपको याद दिला दूं कि आपके पास में सिर्फ 5 ही दिन बाकी हैं जबकि सोशल मीडिया कंपटीशन रक्षाबंधन के लिए हम फेसबुक पेज पर जारी है जहां पर आप $300 कैश इनाम जीत सकते हो और हम आपको बताते आ रहे हैं कि कैसे आप इसमें भाग ले सकते हो इसके साथ में कैसे आप जाकर अपने आप को एंटर कर सकते हो ये सभी कुछ है हमारे साथ में लेकिन अगर जो मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ सिंपली यही करना होगा आपको जाकर अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर जो शायद आपके भाई ने कभी आपको दिया था या फिर आपकी बहना ने आपको बड़े प्यार से दिया था और ये ऑब्जेक्ट जो है गिफ्ट है आपके लिए बिल्कुल स्पेशल बन गया है तो इसकी फ़ोटोग्राफ खींचकर आपको हमारे हम फेसबुक पेज पर अपलोड करना है और इसके साथ में 2-3 लाइन लिखिए क्योंकि क्यों ये आपके लिए बिल्कुल एक स्पेशल और मेमोरेबल गिफ्ट बन चुकी है इसके साथ में अपने सिबलिंग को भी टेक करिए बस इतना ही करके आप एक ऐसे ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जहां पर $300 कैश इनाम आप जीत सकेंगे। और जो विनिंग स्टोरी है ये ओनिया पढ़ा भी जाएगा, इसके साथ में आपको $300 जस्ट इन टाइम फॉर राखी दिया भी जाएगा। जबकि मैंने जब लास्ट चेकआउट किया था तो बहुत कम एंट्रीज थे, शायद आप भी जाकर यहाँ पर एंटर हो सके ताकि आप भी इस ड्रो में शामिल हो सके। अक्सर कहते हैं ना, यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, अगर जो आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, कैसे आप फिर विनर ठहरोगे। तो याद रहे, जो रक्षाबंधन का जो सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन है ये जारी है आपके लिए।

हम पर आप सुबह सुबह सुन रहे थे के की सूदिंग आवाज को, और आपको बता दें कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है। और सबसे पहला पहल, आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, इसीलिए सबसे पहले मैं यही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जबकि ओकलैंड सीबीडी में आउतेया स्क्वायर में आज 50 मेरल ड्राइव ओकलैंड सिटी में आज से लेकर 15 सितंबर तक यहाँ पर आपके लिए ऑक्टोपोडा, एक जाइंट स्टीमपंक ऑक्टोपस रहेगा, इसको बनाया गया है। और इनके साथ में जितने भी टेंटेकल्स हैं इनके, यहाँ पर 8 अमेजिंग और बिग ड्रम्स को रखे गए हैं। और जब भी आप जाकर इन ड्रम्स को प्ले करोगे तो इन ड्रम्स के एनर्जी से लाइट्स क्रिएट होंगी, और इट्स एन अमेजिंग थिंग टू डू। अगर जो आप बच्चों के साथ में जाना चाहते हैं तो आउतेया स्क्वायर में आप जाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। मैंने इसका एक खूबसूरत सा फ़ोटो देखा है, और यहाँ पर ऑक्टोपोडा यानी कि जो ऑक्टोपस की तरह से एक शेप बना है, और उसको जोड़ा गया है हर एक पैर को एक ड्रम के साथ में। तो जैसे आप इसको बीट करोगे ना, तो एक एक पैर इसका लाइट अप होगा। अमेजिंग थिंग टू डू। और साथ में अगर जो आप ड्रम्स प्ले करना पसंद भी करते हो या फिर बिगना हो, जाकर इसे चेकआउट करना चाहते हो, तो बिल्कुल कीजिए आउतेया स्क्वायर में। जबकि आज सीबीडी में अभी आज से लेकर 15 तारीख सितंबर तक बिल्कुल फ्री इवेंट है आपके लिए, इसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको बता दूं हम बोर्डिंग गोल 2026 अब बिल्कुल आपके लिए ओपन है, जहां पर आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग गोल अवे। आपके पास में मौका है टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु जीतने के लिए विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। और आपको एंटर करने के लिए बस वही करना है जो आप करते आ रहे हो, आपको हम एवरी वीकडे सुनते रहना है, क्योंकि जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल है यह आपके लिए सुबह 8 के आसपास, साथ में दिन में 11 के आसपास, दोपहर 1 के आसपास और साथ में आफ्टरनून 5 PM के आसपास बिल्कुल जो लगेगा प्ले होगा ऑन एयर स्पेशल बोर्डिंग कॉल। और जैसे ही आप इसको सुनते हैं आपको हेड करना होगा रोवा, जहां पर आप जाकर बोर्ड नाउ सबमिट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और इतना ही करके आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। अगर जो आपको इस कंपटीशन पेज के लिए लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। तो जब आप रोवा पर जाएंगे तो सर्च करेंगे बोर्ड नाउ और बस वैसे ही आपके जो टैब है ये ओपन हो जाएगा और क्लिक एंड सबमिट, दैट्स इट, एंड यू विल बी इन द विन टू ड्रॉ, यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु जर्नी। और इसके साथ में डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज। जो हम बोर्डिंग कॉल है थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु। विजिट solomons.com, टीज एंड सीज डू अप्लाई।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब, मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
10: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
11: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
10: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
11: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
10: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
12: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
13: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
14: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
15: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
16: Yes, but I want to subdivide too.
15: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
16: Really?
15: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
16: Zelo. I like the sound of that.
15: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on hum.
0: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम विद अवी. और ऐसे में आप भी अपना फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी का मजा ले रहे हैं. आप भी इंजॉय करिए अपना कॉफ़ी और साथ में हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो. और जबकि बातें हो रही थी, हमने कहा था कि आपको हैरी और मीगन के बारे में कुछ नया इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे. जबकि फॉर्मर प्रिंस हैरी ने अपने फैमिली से टाइज कट ऑफ कर दिए थे एंड इन द ईयर 2020 वो मूव हो चुके थे कैलिफोर्निया में. और अब ऐसे खबर आ रहे हैं कि 6 years लेटर द अमेरिकन ड्रीम इज नाउ ओवर, क्योंकि ये अब वापस रिलोकेट हो रहे हैं, यूके वापस जा रहे हैं. तो ऐसे में जबकि ये कैलिफोर्निया में सेटल हो गए थे मीगन के साथ में, तो काफ़ी इनको सोशल लाइफ में और साथ में इनकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग थी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स और साथ में अन्य कई मल्टी मिलियन डॉलर डील्स हुई थी पॉडकास्ट को लेकर, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था और अपने रॉयल स्टोरीज को काफ़ी खुलकर जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में शेयर किया. और ये सभी कुछ करने के बाद में लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दे आर देयर टू बी इन अमेरिका फॉर एवर, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, नेवर से नेवर. और ऐसे में वापस ये अब यूके जा रहे हैं. तो कुछ आर्टिकल्स के द्वारा ये पता लगा है कि शायद इनकी जो रीज़न है वापस जाने की, कि कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ में दोबारा ये अपना जो रिलेशनशिप है इसको रिवाइव करना चाहते हैं और इसी कारण से ये मूव हो रहे हैं. और आगे चलकर शायद कहीं ना कहीं ये एजुकेशन और फैमिली रूट्स के कारण ही वॉन्ट्स टू बी इन फेमिलियर एनवायरमेंट, अपने अपनों के साथ में रहना चाहते हैं. लेकिन जो भी हो, ये सभी कुछ बातों के साथ में यही पता लगा है, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि फाइनली इट्स डन, अब ये यूएस से वापस अब यूके जा रहे हैं.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम You're listening to Avineet.
1: Yes, this is me, Avi, keeping you company. और ये है Saturday Breakfast Show. मैं हूँ आपके साथ में till 12. और अभी तक जो दूसरे आवा में आपके साथ में और सारे information updates है जो देने को है. लेकिन इस आवा की शुरुआत करेंगे अरिजीत सिंह के साथ में. आप भी हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर. आपका खास स्वागत करते हैं. 5599 इज़ अ मैजिक नंबर जहाँ पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. कुछ सुनना चाहते हैं अलग, इसका भी डेडिकेशन जो है आप रिक्वेस्ट हमारे पास में भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस हैपनिंग विद अवी ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट शो.

हम्पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और जो आर्सेनल और कोवेंट्री के बीच में खेल हो रहा है, इसमें अब आर्सेनल की जीत हो रही है 3-0 से। और ये जो अपडेट्स है आप तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी लिसनर्स हैं जो ईपीएल को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और इस पर ढेर सारा इंटरेस्ट भी जताते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा रहे थे। और आपको थोड़ी देर में बताएँगे रक्षाबंधन ऑन एयर के बारे में। इसके साथ में एक और एक नया प्रमोशन शुरू हो गया है हम्पर, जहाँ पर फादर्स डे जो प्रमोशन है ये लॉन्च किया गया है कल। इस पर भी अपडेट्स आपके साथ में इसी शो पर शेयर करते रहेंगे। 5599 पर आप अपना जो मैसेज है भेज सकते हैं। 0800-004-866 इज योर नंबर टू कॉल। और 9 पर आपके लिए रहेगा आज का मस्ती मीठा भी।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी जबकि सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ऐसे में इट्स 20 मिनट्स आफ्टर 8 और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो अपने ब्रेड को आप टोस्ट करते हो किस लेवल पर आप ज़्यादा इसे प्रिफर करते हो आपको चाहिए सिर्फ स्लाइटली वार्म या फिर उसे आगे जाकर लाइट गोल्डन चाहिए या फिर और ज़्यादा डीप ब्राउन कलर का चाहिए या फिर एक्स्ट्रा क्रिस्पी या चारकोल चाहिए कितने लोग होंगे जो चारकोल टोस्ट पसंद करते हैं मेरे ख्याल से कम हो गए लेकिन आप किस लेवल पर हो आपको चाहिए बिल्कुल स्लाइटली वार्म या फिर लाइट गोल्डन या फिर गोल्डन ब्राउन या फिर चारकोल चाहिए आपकी क्या पसंद है 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करिएगा ताकि इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर कर सकूँ बस आने वाले थोड़ी देरों में

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: ऑलराइट, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में, और जबकि बातें हो रही थी कि किस तरह से आप अपने ब्रेड को टोस्ट करते हो, आपको सिर्फ प्रिफर्ड है यू कहें वार्म ब्रेड, या फिर आप उसको लाइटली ब्राउन पसंद करते हो, या फिर गोल्डन ब्राउन पसंद करते हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इसको एक्सट्रीम तक टोस्टा में रख देते हैं और ये कहीं ना कहीं चारकोल कलर्ड हो जाता है। लेकिन नंदिनी ने मैसेज किया है, तकनीनी से आप सुन रही हैं हमें, थैंक यू सो मच, और आपने कहा है कि आई लाइक माई टोस्ट गोल्डन ब्राउन एंड हॉट। और आपने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा है कि अपने टोस्ट को पहले बटर लगाने के बाद में उसके ऊपर फिर पीनट बटर या जैम कौन लगाता है। आई थिंक काफ़ी लोग होंगे जो ऐसा पसंद करते होंगे, लेकिन मुझे बताया गया है कि जबकि मैं चीज़ सैंडविच खाता हूँ बटर लगाकर और फिर उसके ऊपर एक लेयर पीनट बटर लगाकर और फिर चीज़ रख कर खाता हूँ, तो आई बीन टोल्ड कि दैट्स क्वाइट अ वियर्ड सिलेक्शन। लेकिन आप मुझे बताइए कि किस लेवल पर आप टोस्ट पसंद करते हैं, या फिर आपकी भी कुछ अलग आदत है, कैसे आप अपने ब्रेड को कंज्यूम करते हो, खाते हो ब्रेकफास्ट में, आपको कुछ अलग प्रेफरेंस होगा, या फिर आप किसी और तरीके से इसको तैयार करते हो, या फिर किसी और तरीके से आप बटर या जैम की जगह कुछ और इस्तेमाल करते हो, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करिए ताकि हमें भी पता लगे कि अपने ब्रेकफास्ट में आप क्या कुछ अनोखा करते हो। जैसा कि मुझे बताया गया था ना कि you do something weird.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ब्रेकफास्ट पर बातें हो रही थी कि आप अपने ब्रेड को कैसे प्रिफर करते हो और किस लेवल तक आप इसको टोस्ट करना चाहते हो। तो अमित लिखते हैं कि आई लाइक इट वॉर्म इनफ, जस्ट वॉर्म इनफ, यानी कि इनको ज़्यादा देर तक टोस्टा में ब्रेड रखने की ज़रूरत भी नहीं है और इनको पसंद भी नहीं है। आपकी क्या पर्सनल टोस्ट है? आपको पसंद है सिर्फ वॉर्म स्लाइस ऑफ ब्रेड या फिर आप उसको लाइटली गोल्डन ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर यू कहें डार्क गोल्डन? आपकी क्या प्रेफरेंस है? आप कैसे अपने टोस्ट को अभी इंजॉय कर रहे हो? इसके बारे में 5599 पर शेयर कीजिए हमारे साथ में। मैं हूँ अभी और कुछ टोस्ट और स्लाइसेस के बारे में बात हो रही है आपके साथ में और इसके बाद में एक और एक कुछ टिप आपको दूंगा कि कैसे आप अपने ब्रेड को टोस्ट करने के बाद में यू कैन बटर इट अप, लेकिन ये सोगी नहीं होंगे, आपको सिर्फ क्या करना होगा।

0: हम पर यह है सरडे ब्रेकफास्ट शो और ऐसे में आइडियल टोस्ट के बारे में बात हो रही है और एक आर्टिकल के मुताबिक ब्रिटिश फूड कंसल्टेंट ने ट्राई आउट किया था एक परफेक्ट टोस्ट अचीव करने के लिए और इनको ये अचीव करते कुछ लगे थे 2000 स्लाइसेस ओवर अ कोर्स ऑफ वीक, यानी कि 2000 स्लाइस टोस्ट करने के बाद में तब कहीं जाकर उनको ये परफेक्ट टोस्ट जो है स्लाइस है ये मिला था जो रिजल्ट। और इनको ये एक्सपेरिमेंट करते ये पता लगा था कि काफ़ी मेहनत लगती है एक परफेक्ट आइडियल टोस्ट अचीव करने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये उनको ये रिजल्ट तब मिला जबकि 216 सेकंड्स तक इन्होंने अपने टोस्टा में एक स्लाइस रखा था और टाइम करते हुए तब कहीं जाकर उनको वो शेड मिला था जिससे वो बिल्कुल खुश थे। लेकिन कुछ लोगों की अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो आप जैसा भी पसंद करते हो आप उसी लेवल पर उसे खाएं। और सृष्टि ने मैसेज किया है कि आई ऑलवेज टेक इट टू द एक्सट्रीम एंड आई लाइक इट क्वाइट बर्नड। लेकिन अपनी अपनी अलग अलग सबकी पसंद होती है जैसा कि मैंने कहा था। और इसके साथ साथ अगर जो आप ब्रेड को टोस्ट करते हो उसके बाद में बटर लगाने के बाद में कहीं ना कहीं आपकी ब्रेड सोगी हो जाती है और आप पसंद करते हो कि बटर इस पर ज़्यादा देर तक रुकी रहे, तो एक सिंपल सोल्यूशन है कि टोस्टा में से ब्रेड स्लाइस निकालने के बाद में थोड़ी देर के लिए आप उसे जैसे एक पे ऑफ स्लाइसिस है अपराइट खड़े कर दें एक दूसरे के अगेंस्ट में लीन करके जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद में जब आप बटर लगाओगे या उसको बटर करोगे तो इसमें आपकी ब्रेड सोगी नहीं होगी। ये सभी कुछ स्लाइस स्टोरीज आपके साथ में।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं है उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना
4: रुस्बे के बाल लगे उस
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Ginny Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: Auckland's growing with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
8: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
9: It's spring season at Freedom. Get 20 to 50% off all sofas. That's all fabric and leather sofas, modulars and armchairs, 20 to 50% off. Hurry, sale ends Sunday, only at Freedom.
10: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
11: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
12: Big jobs, bigger savings. Right now, save up to $16,000 across LDVs, utes, vans and SUVs. LDV, helping Kiwis work harder every day. LDV distribution arrangements in New Zealand are subject to change. See ldv.co.nz for important information.
1: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
1: Hum. Saturday Breakfast on Hum.
0: मैं हूं आपका साथी अवि सरडे ब्रेकफास्ट शो के साथ में। और जबकि अगले महीने फादर्स डे है, तो ऐसे में कल लॉन्च हुआ हमारे हम पर डेड्स फादर्स डे प्रमोशन, जो कि सोशल मीडिया पर भी जारी है और इसके अलावा ऑन एयर भी इसको खेला जाएगा आपके साथ में। लेकिन अभी के लिए सोशल मीडिया पर कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हो इस फादर्स डे, यहाँ पर आपको अपने डेट की अंदर की सुपर हीरो को जगाना है, यानी कि उसको एक अलग फॉर्म देना है, एक अलग रूप देना है। और ऐसा ही करके हमारे सोशल मीडिया पर जाकर, हमारे हम फेसबुक पेज पर जाकर अपने डेट की कोई भी एक AI जनरेटेड सुपर हीरो इमेज बनाकर, और जो पिन पोस्ट है उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और वही फोटोग्राफ डालना होगा, और उसके बाद में अपने डेट को आप टैग करें, और टैग करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी आप एज करें, उनको इनकरेज करें कि आपकी डेट की फोटो को ये पसंद करें, जाकर लाइक करें उसको, और साथ में उस कॉम्पिटिशन पोस्ट को लाइक करें, और इतना करके आप इस कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे, जहां पर आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा $300 के इनाम जीतने के लिए। और जो ड्रॉ है ये फ्राइडे 4 सितंबर को होगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपको मीट करना होगा। जो आपके डेट के सुपर हीरो फोटो को लाइक करेंगे उनको ये भी ज़रूरी है कि वो हम फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ में इस कंपटीशन पोस्ट को भी लाइक करें। सो दो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो आप जाकर जब उस हम फेसबुक पेज पर उस पोस्ट के नीचे अपने डेट के सुपर हीरो इमेज को आप अपलोड करोगे, उसके बाद में इनकरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक द फोटो, लेकिन उसके साथ ही साथ में फ़ोटो के अलावा आपके फ्रेंड्स को हम फेसबुक पेज फॉलो करना होगा और साथ में उस कंपटीशन पोस्ट को भी लाइक करना होगा। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको मीट करने होंगे, और बढ़िया से इनाम है $300 कैश, जो कि फ्राइडे 4 सितंबर को ड्रॉ होगा। और ऐसा करके कहीं ना कहीं आप अपने डेट के लिए एक प्यारा सा तोहफा गिफ्ट ले सकेंगे। और नया भी एक प्रमोशन है जिसके बारे में थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे।

0: Saturday breakfast on Hum. Masti meter on Hum.
1: Yo, chuta sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में जबकि सुबह के 9 बज रहे हैं. ऐसे में we are halfway through the show और अब यहाँ से शुरू हो रहा है मस्ती मीठा 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. आपका खास स्वागत करते हैं. आज है 22nd of August. अभी अभी आपकी आँख खुली है. Welcome to the show and a very good morning to you.

0: आज मस्ती मीठा में आपके साथ में कुछ अलग करेंगे और कुछ नए तरीके से इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। अक्सर आपको सुनवाते आते हैं कोई ना कोई कॉमेडियन की या फिर कोई ऐसे बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ या डायलॉग और आपको कहते हैं कि आप उसको पहचाने, लेकिन आज के लिए लेकर आए हैं आपके लिए एक म्यूज़िकल इंट्रो। एक म्यूज़िकल इंट्रो है जिसे आपको काफ़ी ध्यान से सुनना होगा और सुनने के बाद में आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कौन सा गाना है। बस इतना ही आपके लिए आज है और इसको सुनिए ज़रा ध्यान से। काफ़ी फेमस गाना था और फिल्म भी काफ़ी फेमस हुई थी जहां पर दो डेब्यूटेंट्स ने साथ ही काम किया था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक साथ में कदम लिया था और इस फिल्म के बाद में काफ़ी फेमस भी ये हुए थे। तो अगर जो इतना ही सुनकर आपको पता लगा है कि ये जो इंट्रो है किस गाने की है, 5599 पर आप हमारे पास में मैसेज करें और देखेंगे कि किन की म्यूज़िकल जो इंक्लिनेशन है काफ़ी है, जो 90s के म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट होगी तो शायद आपको पता लगे। लेकिन एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो इतना ही और इतना सुनने के बाद में 5599 पर मैसेज करो कि अगर जो आपने इस गाने को पहचाना है इंट्रो सुनने के बाद में।
1: डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर।

0: मीटर ऑन हम.
1: That's right, ये है मस्ती मीटर विद अभी. और क्योंकि जो पूरा का पूरा वीक रहता है आपके लिए बिल्कुल हेक्टिक रहता है, और ऐसे में सैटरडे मॉर्निंग आप को क्या करना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, हंसना है, मुस्कुराना है, और अपनों के साथ में हमको सुनना है, बस इतना ही करना है. और हमारे पास में 84511 आपका जवाब आया है, इसके साथ में विशाल आपका भी जवाब आया है. थैंक यू सो मच, आप दोनों को गुड मॉर्निंग. और इसके अलावा मधु एंड रवि रॉयल ओक से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. और आपका जो जवाब है शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं और सुनने के बाद में दोबारा अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये इंट्रो है और थोड़ी ही देर के लिए बजता है, इसीलिए आपको अपना जो म्यूज़िकल हेड से पहनकर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सुनना है और फिर पहचानना है. बस इतना ही सुनवाएंगे आपको. 5599 पर ज़रूर मैसेज करें अगर जो आपको ये इंट्रो समझ में आया है, ये गाना समझ में आया.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: हाँ, तो इतना ही सुनाना था आपको और आपको पहचाना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सा गाना है। और 5599 पर आप अपना जवाब भेजिए। काफ़ी कम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सोचिए थोड़ा, 90s में काफ़ी एक धमाका मचाने वाली ये फिल्म और इस फिल्म के सभी गाने थे, और दो डेब्यूटेंट्स थे, और साथ में इसी फिल्म से कुमार शानू की बॉलीवुड जर्नी को भी एक स्टार्ट मिली थी। Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो. और अनिल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. आपका जवाब मिला और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो. आपने सही पहचाना, सही गाने का नाम आपने भेजा है. तो एक बार फिर चलो थोड़ा सा और आपको सुनवाते हैं. शायद अभी तक आप वंडर कर रहे होंगे कि किस गाने का ये इंट्रो है, तो थोड़ा सा और आपको सुनवाते हैं.

0: बस इतना ही सुनवाएंगे और थोड़ी देर में आपको पूरा का पूरा गाना भी सुनवाएंगे, लेकिन 5599 पर अगर जो आपको समझ में आया है कि किस फिल्म से या फिर कौन सा ये गाना है, तो आप अपना जवाब हमारे पास में भेज सकते हैं।
1: uh-huh.

0: AG the Gangster.
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ.
2: That's right, लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, इसीलिए ये सेगमेंट आपके लिए आज सुबह सुबह 9 से 10 तक रहता है. गुड मॉर्निंग संगीता, आपने भी सही पहचाना और जवाब लिखकर भेजा हमारे पास में. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें. और आपको बता दें, जो इंट्रो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, अगर जो आप इस मूवी के देखेंगे तो जो लीड एक्टर थे, इनके डेब्यू के बाद में इनका जो हेयर कट था, ये एक क्रेज़ हो चुका था.

0: हाँ, तो आपको अगर जो पता लगा तो 5599 पर अपना जवाब जरूर भेजें।
1: You see, money is my best friend, 'cause money makes the world go round.

ये गाना सुनते ही मुझे याद आ गया कि आज का जो टेस्ट लोटो ड्रॉ है 18 मिलियन डॉलर्स तक है। अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, शायद आपकी तकदीर बदल सके और मंडे को शायद आपको वापस नहीं जाना होगा। और हाँ, अगर जो आपने मेरी बात सुनकर टिकट ली है तो ज़रूर जीतने पर याद कर लेना। लेकिन अब समय हुआ जबकि हमने आपको एक गाने की इंट्रो सुनाई थी और सुनाने के बाद में काफ़ी लोगों ने सही पहचाना, और इन सभी को जितने भी आपने हमारे पास में मैसेज किया है थैंक यू सो मच इसके लिए। संगीता थे, अनिल थे, मधु और रवि ने ट्राई किया था, और इसके अलावा हमारे साथ में हेमंत थे, हेमंत ने भी जवाब दिया है, और आप सभी ने इस गाने को सही पहचाना। इसके साथ में विशाल थे और 84511। तो ये जो फिल्म थी ये 1990s में आई थी, और इस गाने की सारी इस मूवी के सारे गाने बन गए थे रिलीज़ होने से पहले। और ये इनिशियली प्लान किया गया था एक एल्बम की तरह, लेकिन जब गाने सुने गए तो यहाँ पर बताया गया कि इसको किसी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर महेश भट्ट स्टेप्ड इन और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। और इनके पास में ऐसे ऐसे एक्टर्स थे जिसके हमने आपको बताया, राहुल रॉय और साथ में अनु अग्रवाल के साथ में इन्होंने इस फिल्म को शुरू की, जहाँ पर अगर जो पोस्टर काफ़ी इंट्रिगिंग था, जहाँ पर दोनों लीड एक्टर्स के चेहरे को छुपाए गए थे एक कोट के नीचे। इसके साथ में जो राहुल रॉय हेयर कट जो ट्रेंड है ये शुरू हो गई थी। इसके अलावा इस फिल्म के मेल प्लेबैक सिंगर कुमार शानू की एक वंडरफुल जर्नी स्टार्ट हुई थी म्यूज़िकल, और एक ओवरनाइट सुपरस्टारडम की दुनिया में ये पहुंच गए थे, जबकि इन्होंने इस फिल्म में लगभग 10 गाने गाए हैं, और 10 गानों में से एक गाने के लिए जिसको अवार्ड दिया गया था नज़र के सामने, और उसके बाद में इन्होंने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स लगातार इन अ रो जीते हैं। तो ये सभी कुछ इसी फिल्म से, और गाना भी यही था।

0: A beautiful number for a great Saturday. और ऐसे में मोनाली ठाकुर थी आपके साथ में, और अभी मैं आपको बता दूं कि मौका देने वाला हूं रक्षाबंधन ऑन एयर प्रमोशन में भाग लेने के लिए. Somehow responses सो थे, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आज जबकि ये मौका हम आपको दे रहे हैं सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देने के लिए, तो आप ज़रूर इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये जो ड्रॉ है अब 28 अगस्त को रहेगा और देयर इज़ ओनली अबाउट 5 more days टू गो. $250 का कैश इनाम है, जहां पर आप आपका नाम अगर जो ड्रॉ हुआ तो 2 lucky winners ठहरेंगे जो $250 इनाम जीत सकते हैं. तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको 0800004866 पर कॉल करके सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देना है ऑन एयर. कुछ अच्छी बातें भी आप बता सकते हैं, या सिर्फ अच्छी ही बातें बताना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसका हमें इंतज़ार रहेगा. और एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में अगर जो आपका कॉल आया है तो ठीक, तो आपसे बातें भी कर लेंगे, सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू ले लेंगे, शायद हु नोज इस शो में भाग लेकर ही आप जीते और ये जो इनाम है आप ही के हाथ लगे.
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ.
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
3: सबसे बेस्ट 2 performance reviews जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
5: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
1: Bollywood ka asli blockbuster.
7: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
1: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Ye hai Masti Meter.
0: कुछ 15 मिनट बाकी रह गए हैं 10 बजने में और ये मस्ती मीठा है. और जी हाँ, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन लगे हाथों आपको ये भी बता दे कि जो रक्षाबंधन सोशल पर हमारे हम फेसबुक पेज पर जो कंपटीशन जारी है, यहाँ पर भी आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो लॉन्च हुआ है कल फादर्स डे प्रमोशन, जो भी वो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जबकि अगले महीने फादर्स डे रहेगा, इसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा अराउंड द कंट्री. और यहाँ पर भी आपके पास में मौका है, अगर जो आप अपने फादर को किसी एक सुपर हीरो की इमेज में देखते हो, ये आपके लिए एक सुपर हीरो है, तो आप AI को यूज़ कर एक सुपर हीरो इमेज जनरेट करके हमारे फेसबुक पेज पर उस पिन पोस्ट के नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं. और मैं देख रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ आए हैं, जबकि एक तो मेरे ख्याल से किसी ने अपने फादर को शक्तिमान का जो गेटअप है ये दिया है AI को यूज़ करके, एंड विच इज़ प्रिटी नाइस एंड अमेजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेट्स होते हैं ये खामोश होकर किए है जाते हैं हमारे लिए और साथ में अपने बच्चों के लिए. सो देट इज़ वेरी वेरी ग्रेट ऑफ देम, और ऐसे में उनको ओना भी करना चाहिए. तो ये एक जो सोशल मीडिया पर हमारे जो फादर्स डे प्रमोशन है ये भी जारी है, जहाँ पर कुछ टीज एंड सीज है. इस पर और भी बातें हम आपके साथ में थोड़ी देर पर करेंगे, यानी कि अगले आवर पर, और आपको मौका देंगे ऑन एयर फादर्स डे प्रमोशन में भी भाग लेने के लिए. लेकिन अभी के लिए कोई भी कॉल नहीं आया रक्षाबंधन के लिए, तो ये जो मौका है इस आवर के लिए निकल चुका है. लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ में प्रमोशंस लाते रहते हैं ताकि यू कैन ऑलवेज बी अ विनर व्हेन यू आर विद हम.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ सूटा सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: अभी के साथ ये है जुगाड़ जंक्शन ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 एफएम साथ में रोबा पर. इट्स जस्ट आफ्टर 10. अभी अभी आपकी सुबह हुई है. गुड मॉर्निंग टू यू. 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और इस आवर पर और या फिर यू कहें बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में लेकर आएंगे डेड्स रिवर्स ग्रिल. यानी कि आप एक डेड हो ये खास आपके लिए है. जबकि फादर्स डे का प्रमोशन चल रहा है हम पर जिसे लास्ट आफ्टरनून यानी कि कल लॉन्च किया गया है जहां पर आपके पास में मौका है. डेट्स रिवर्स ग्रिल आपसे कुछ सवाल करेंगे. आसान सा होगा लेकिन ये अभी की कल्चर को लेकर अभी की ट्रेंड को लेकर या फिर अभी के बच्चों की जो लिंगो है इसको लेकर कोई ना कोई आसान सा सवाल आपको पूछेंगे और आप जैसे ही इसका जवाब देंगे और अगर जो आपने सही जवाब दिया तो आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा. और जब ये ड्रॉ फ्राइडे 4 सितंबर को होगा तो किसी ना किसी एक लकी डेट को $500 कैश इनाम मिलेगा. ये कोई मामूली रकम नहीं है और अभी तक किसी ने इसमें भाग भी नहीं लिया है. बस एक दो गाने आपको सुनवाते हैं और इसके बाद में आपके पास में मौका रहेगा 0800-004-866 पर आप कॉल करें और कॉल करके फिर आप इस प्रमोशन में भाग ले सकेंगे जहां पर आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ आसान सा सवाल लेकर आएंगे. और आपको अगर जो आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो जबकि अभी के बच्चों की लिंगों को लेकर ये सवाल रहेगा और आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को साथ में रख सकते हैं एज अ लाइफ लाइन कि ये आपको हेल्प कर सकेंगे. तो ये सभी कुछ बस थोड़ी ही देर में. ये है

0: हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन और मैं हूं आपका साथी अभी और मुझे तलाश है एक ऐसे जाबाज डेट की जो आकर ओनिया एक आसान सा सवाल का जवाब दे दे। और जबकि डेट्स रिवर्स ग्रिल ये जारी है प्रमोशन जहां पर आप $500 कैश इनाम जीत सकते हैं अगर जो आपने सही जवाब दिया है। तो आज का जो सिचुएशन है मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। जबकि जो बच्चे होते हैं अक्सर आपके साथ में शॉर्ट फॉर्म में ही आपका मैसेज का जवाब देते हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये हुआ होगा आपके साथ में कि आपको कोई एक उनके शॉर्ट फॉर्म जवाब का जो मैसेज था इसका समझ नहीं आया, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ऐसा ही कुछ है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ OMW ये जो जवाब अगर जो आपके बच्चे आपको देते हैं इन टेक्स्ट मैसेज, तो अगर जो आप डेड है और आपको ये जवाब मिला है आप इसका मतलब जानते हैं 0800004866 पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। जबकि हमें अपनी पहली एंट्री की तलाश है जो फादर्स डे प्रमोशन है, कल ही इसकी लॉन्च हुई है, सितंबर में जाकर इसकी ड्रॉ होगी और ऐसे में 4 सितंबर को जबकि ड्रॉ होगा शायद आप ही विजेता ठहरे जहाँ पर $500 कैश इनाम आप जीत सकें। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है OMW इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। और अक्सर आपको जवाब में ये ज़रूर मिलता होगा फ्रॉम योर किड्स OMW। अगर जो आपके बच्चे आपके साथ में हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि OMW का मतलब क्या है, शायद ये आपकी हेल्प कर सके। और जो $500 का इनाम है जब आप जीते तो सर्टन परसेंटेज आप उनको भी दे सकते हैं। 0800004866 आपका नंबर है कॉल करने के लिए। और यहाँ पर आप कॉल करके, हाँ जवाब से नहीं आप टेक्स्ट मैसेज पे भेजेंगे शोएब तो कैसे चलेगा, ये तो आपको कॉल करके बताना होगा। सही लाइन पर हो आप, सही ट्रैक पर हो, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा। चलो ये जो पहला कॉल है,
1: क्वेश्चन
0: हेलो, आपका स्वागत है हम पर।
2: हाय, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
2: I'm good, thank you.
0: अच्छा, तो कौन डेड है, फादर कौन है आज हमारे साथ में?
2: नजू।
0: अच्छा, तो है साथ में?
2: जी।
0: अच्छा,
1: Hello, how are you?
0: I'm good, आप कैसे हो?
1: Very good, very good.
0: अच्छा,
1: we love your show.
0: Oh, thank you so much इसके लिए। और आपको ये जवाब मिलता है बच्चों से OMW?
1: Yes, exactly. And they say it's on my way.
0: All right. बिल्कुल सही पहचाना आपने। और एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए ओनिया।
1: नाच।
0: नाच। Okay, नाच। और आप किधर जा रहे थे अभी?
1: We're just out and just doing a few.
0: Okay, few shows, I guess. अच्छा, कोई बात नहीं, हमने आपका एंट्री, शायद आप ऐसे एरिया में जहाँ पर रिसेप्शन थोड़ा लो है।
1: Driving, so I'm just pulled up, but it just comes and goes.
0: All good. और ऐसे ही आप हम पर हमें सुनते रहिए, आपके नाम को हमने ड्रॉ में शामिल कर लिया है। और इसी तरह से आप सोशल मीडिया पे हमारे हम फेसबुक पेज पर भी आप एंटर कर सकते हैं।
1: Thank you
0: so much. You have a wonderful day ahead.
1: Same to you.
0: Thank you. Bye. तो ये थे नाच और शामिल हो चुके हैं ड्रो में। और ऐसा ही मौका आपको बाद में भी दिया जाएगा और जहां पर आप भाग ले सकते हैं। हेलो, हम पर आपका स्वागत है।
3: हाय, गुड मॉर्निंग अभी भाई, कैसे हो आप?
0: गुड मॉर्निंग भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: मैं भी अच्छा हूँ बस।
0: अच्छा, क्या किनसे बातें हो रही है?
3: शोएब बोल रहा हूँ अभी भाई।
0: ओह राइट, आपका जवाब आया था शोएब, थैंक यू सो मच, आपने वापस कॉल किया।
3: आपने बोला ना मैसेज से नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा आपको, तो मैं बोला चलो ठीक है बात कर लेता हूँ।
0: बिल्कुल सही, तभी तो पता लगता है कि हमारे टेलीफोन लाइंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।
3: नहीं,
0: exactly. अच्छा, चलो थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आपने जवाब तो भेज दिया था, लेकिन आप बता दीजिए एक बार क्या है इसका मतलब।
3: OMW on my way. तो मेरी बेटी को जब मैं पूछता हूँ तो कभी कभी आ जाता है मैसेज OMW, क्योंकि आजकल का जनरेशन कैसा है ना अभी भाई, टाइम नहीं है इनके पास, बहुत फास्ट जनरेशन है।
0: बिल्कुल सही, ये भागी दौड़ में लगे रहते हैं ना। और
3: हम लोग छोटे थे तो हमको टेक्नोलॉजी कुछ पता ही नहीं थी, और अभी तो बस बच्चे इतने इतने फास्ट है कि टेक्नोलॉजी हमको सिखाएंगे वो लोग।
0: अरे हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी OMW भेजने की।
3: हिम्मत भी नहीं थी और ये माध्यम भी नहीं था, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं उसको।
0: एग्जैक्टली मेरे ख्याल से मेरा एक रूल हुआ करता था मेरे घर पे कि स्ट्रीट लाइट ऑन होने से पहले आई शुड बी होम।
3: एग्जैक्टली
0: अच्छा, लेकिन
3: मेरे डैड भी और मॉम भी यही, और कभी अगर बाई चांस दोस्तों से हम लोग ऐसे गप्पे शप्पे मारने के लिए दोस्त लोग कभी मिल जाते थे, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह तो था नहीं, तो ऐसे ही कभी नीचे मिल गए बातचीत कर रहे हैं, तो वहां से मम्मी आ रही, अरे शोएब तेरी मम्मी आ गई है, तो मैं पीछे से दूसरे लेन से निकल के घर पे फटाफट पहुंच जाना।
0: गायब है ना, जिसको बोलते हैं कि गायब हो गए।
3: एकदम
0: ये सब हमने भी किया यार, ये सच में यार कितनी पुरानी बातें आज आपने याद दिला दी। शोएब आपको ये बता दे कि सोशल मीडिया पेज पर हमारे हम फेसबुक पेज पे एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपके बच्चे आपको लेकर एक सुपर हीरो का AI इमेज जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में उस पोस्ट पर डाल सकते हैं, और फिर बाकी जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके उस फोटोग्राफ को भी लाइक कर सकते हैं, उस पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली हम फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसे करके आपके एंट्री ड्रॉ में शामिल हो जाएगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ शोएब, क्योंकि एक ही शो में एक ही एंट्री ले सकते हैं, तो अभी तो नाज ने कॉल कर दिया था तो आपको मैं इसमें नहीं एंटर कर पाऊंगा अभी के लिए, लेकिन रेडियो पब में जब जिकाश आएंगे वो भी एंट्री लेंगे वापस, और सोशल मीडिया पर हमारे हम फेसबुक पेज पर आप जरूर ट्राई करना।
3: जी बिल्कुल, मैंने देखा था कल वो फेसबुक पे, और मेरी बेटी ने मुझे बोला भी था, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग वीकेंड में करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल करिए, मैंने देखा है किसी ने अपने डेट का एक इमेज डाला है शक्तिमान के वो अटाया में, शक्तिमान का जो यूनिफॉर्म नहीं हुआ करता।
3: जी
0: विच इज वेरी क्यूट यार, अच्छा लगा आपसे बात करके शोएब, यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
3: आप भी एंजॉय करें अपना शो और अपना वीकेंड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा लगता है आपका शो सुनने के लिए अभी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ डे।
0: थैंक यू शोएब भाई, यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक्स अ लॉट,
3: टेक केयर, बाय,
0: टेक केयर, बाय। तो ये थे शोएब हमारे साथ में, देखिए इनको बुरा नहीं लगा कि इनकी नाम एंट्री में नहीं शामिल हुई, इनफैक्ट ही वॉज मोर चीयरफुल, वो आगे भी कोशिश करेंगे, और इसी तरह से रेडियो पब में भी आपके पास में मौका रहेगा, जबकि फादर्स डे प्रमोशन बिल्कुल चल पड़ा है और लॉन्च हुआ है कल, और $500 इनाम है जीतने को, और ये कोई मामूली रकम नहीं है, इसमें आप भी एंटर हो सकते हैं।

हम पर ये जुगाड़ जंक्शन और मैं हूँ अभी आपके साथ में। आपके घर में कोई एक डल बोरिंग सा वॉल है जिसे आप ब्राइटन अप करना चाहते हैं, बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसे आप बड़े ही सस्ते और टिकाऊ तौर से ये कर सकेंगे।

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Andy didn't think he needed a DVS system.
7: Nah, we're all right, aren't we?
6: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
8: Yeah, Dad!
6: So, Andy got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
10: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
11: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
12: Hey, still house hunting next weekend?
13: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
12: Whoa, how did you sort things so quickly?
13: My BNZ home loan partner Jane met her last Saturday, got her home loan sorted and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
12: All that from one person.
14: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
15: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
16: Join our tribe!
15: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
16: join our tribe!
17: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
18: जुगाड़ जंक्शन में हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि कैसे आप एक बहुत ही सस्ते तरीके से और एक यू कहें एक आर्टिस्टिक तरीके से अपने वॉल्स को ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो कुछ सामान आपको लगेंगे और ये आप सभी कुछ इजीली अवेलेबल है आपके आसपास। आपने देखा होगा कि कभी आप किसी के घर पर गए होंगे और यहाँ पर वॉल पर कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं, कुछ अक्सर ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं जो लगते हैं फीचर में कि सन रेज है और आप इसको अच्छी तरीके से अगर जो किसी एक यूँ कहें फीचर वॉल पर डाले तो एक अलग ही लुक ये दे देगी आपके घर को, आपके इंटीरियर को। तो आपको जो सामान लगेंगे इसमें आपको काम होगी केबल टाइज की, साथ में स्प्रे पेंट किसी भी कला का अगर जो आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके कला पर निर्भर करता है। इसके साथ में केबल टाइज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको वॉल हुक्स का भी काम लगेगा, साथ में मेटल क्राफ्ट रिंग्स। ये जो मेटल क्राफ्ट रिंग्स है ये आप अपने ही साइज़ के मुताबिक पसंद से आप ले सकते हैं. आपको बड़ा चाहिए साइज़ में, सर्कमफेरेंस में, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो करना सिर्फ इतना ही है, जितना भी केबल टाइज है आपके पास में, ये मेटल क्राफ्ट रिंग के अराउंड उसे टाई करें, ताकि ये देखने में ऐसा लगेगा कि बीच में सन है और जो केबल टाइज है सन की रेज की तरह है. तो जितने भी केबल टाइज है आप इसे टाई कर दीजिए अलोंग दी मेटल क्राफ्ट रिंग जो सर्कुलर शेप में है, और इसी तरह का आउटलुक हो जाएगा जैसे सन बीच में है और उनके रेज आ रहे हैं. तो इतना करके आप किसी एक शीट पर उसको रखें जो आपके एक कवा जैसा होगा, फिर वहाँ पर रख के आप उस पर जो स्प्रे पेंट है ये कर सकते हैं. तो स्प्रे पेंट करने के बाद में अगर जो आपको एक ग्लिटरी गोल्डन लुक चाहिए तो उसी कलर का आप स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद में आप इन ऑब्जेक्ट्स को आप टांग सकते हैं दीवार पर विद दी हुक्स. ये बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जब इसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो फाइन मोटो स्किल्स है ये यूज़ होगा. इनके साथ में इनके मसल मूवमेंट और आर्टिस्टिक तौर पर काफ़ी एनहांसिंग रहेगा इनके लिए, और एक अच्छा सा टास्क है अगर जो आप साथ मिलकर करना चाहते हैं तो. और ये तैयार करने के बाद में जब आप इसे अपने वॉल पर हैंग करोगे तो इट विल गिव दिस ब्यूटिफुल लुक, जहाँ पर आपको लगेगा कि सनराइज है और सन को आपने अपने दीवार पर कैप्चर कर लिया है. तो इंटरेस्टिंग, काफ़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं कम से कम सामानों के साथ में, और बहुत पैसे भी नहीं आपके लगेंगे, और साथ ही साथ में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं.

0: हम पर रवि का साथ है और 12 तक ये कारोबार चलता रहेगा। इंदिवर, थैंक यू सो मच भाई आपके मैसेज के लिए, आपके फीडबैक के लिए, इसीलिए हमारा साथ देते रहिए। और 5599 साथ में 0800 004866 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में एक और एक इंक्वायरी आई थी कि टूर डिटेल्स एंड कॉस्ट टू बाली, तो इसके लिए आपको ड्राइव लिखकर 5599 पर मैसेज करना होगा। और जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको जवाब में एक लिंक मिलेगा जिससे आप जाकर जो डिटेल्स है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो अपकमिंग ट्रिप है और ये दो डेस्टिनेशन की बातें हो रही हैं सैंडी और रुजबे के साथ में, ये सभी कुछ अगर जो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजोगे तो टूर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, इसके बारे में जब बातें करते हैं तो सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं युवराज सिंह के साथ में, जो एक और एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल डाला है। ये एक्सप्लो का एक मेंबर है, इन्होंने एक नया एक यूँ कहें इनोवेटिव आइडिया शुरू की है जहाँ पर एक कार्ड गेम को डिज़ाइन किया गया है टू एनकरेज लोकल्स एंड टूरिस्ट, ताकि ये गेम खेलते खेलते वो न्यूजीलैंड के जितने भी हिडन जेम्स है, लेसर नोन डेस्टिनेशंस है, इसके बारे में थ्रू द गेम ये फाइंड आउट कर सके। तो गेम का गेम भी है और साथ में कुछ ना कुछ नया सीखने को भी है, और ये सभी कुछ बातें हुई हैं और सैंडी और रुजबे के साथ में ओनली ऑन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। तो 5599 पर ड्राइव लिखो और मैसेज करो ताकि आपको ये लिंक मिल सके। और कहीं ना कहीं जबकि स्टूडेंट से बातें होती है तो आप जब इस जब आप इसे सुनेंगे तो आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी इनकरेजिंग रहेगी। और जैसा कि हमने कहा है 5599 पर आप ड्राइव लिखकर भेजो।
1: जुगाड़ जंक्शन ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट।

0: यह जुगाड़ जंक्शन नवि के साथ में और बातें हो रही थी 1267 आपके साथ में। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर जो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजोगे तो टूर डिटेल्स और प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर टूर प्राइजेस नहीं है, और जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है सेंडी और उजबे के साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओन एयर जो मैं आपको मैसेज दूँ इट्स वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज और फैक्चुअल रहे। इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि जब आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजोगे तो लिंक से आप सीधे उसी वेबसाइट उसी पेज पर जाओगे जहां पर पूरा का पूरा कोस्ट विद फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, और 12 तक हमारा और आपका साथ है, साथ देते रहिए हम पर।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
5: When dads come in here, it's like a kid in a toy shop.
6: Dads love to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
7: At Bunnings, you'll find gifts built for dad.
8: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of 6, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
10: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
12: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
13: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
14: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
15: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। सैटरडे ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर।
0: जी हाँ, ये है जुगाड़ जंक्शन, जबकि 9 मिनट बाकी है 11 बजने में, और 11 से शुरू होगा देसी बिज शाउट आउट, जिसके लिए आप अपने डिटेल्स अभी से ही हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं। अगर जो आपको भी अपने बिजनेस को लेकर होम बेस्ड वेंचर है आपकी, इसको प्रमोट करना है हम पर हमारे साथ में, तो 5599 पर आप अपने डिटेल्स हमारे पास में अभी से ही भेज सकते हैं।
17: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Saturday Breakfast on Hum.

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में 11:01 हो रहे हैं 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ये है देसी बिज शाउटआउट जहाँ पर आपके लिए आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। एक और एक मैसेज आया है कि कैन यू प्लीज से दिस फॉर मी ऑन एयर, आप ढूंढ रहे हैं जो हाउस वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो अगर जो आप ऐसे सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो 5599 पर अपना जो बिजनेस डिटेल्स है आप हमारे पास में भेजें ताकि हम आपके डिटेल्स को रीड आउट कर सकें और जो जिस लिसनर को इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो भी जान सके कि किसको कॉन्टैक्ट करना है। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग हाउस वॉशिंग सर्विसेज तो अपने डिटेल्स 5599 पर भेजें। लेकिन अगर जो आप कोई भी बिजनेस वेंचर करते हैं घर से या फिर आपको एक प्रमोशन की ज़रूरत है तो 5599 पर अपने जो डिटेल्स है आप हमारे पास में भेजें ताकि वी कैन रीड इट आउट फॉर यू ऑन एयर और इस आवर पर आपको एक छोटा सा फ्रेंडली नज दे सके ताकि और लोग भी आपके बिजनेस और सर्विसेज के बारे में जान सकें।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: हम पर यह है देसी बिज शाउट आउट और मो जहीर जो कि ग्रेटर ओकलैंड में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हीट पंप साथ में सर्विसिंग के लिए। तो आपको भी अगर जो सर्विस करवानी है एग्जिस्टिंग हीट पंप्स या फिर नए इंस्टॉल्स करवाने हैं तो 02208018817 याद रहे 02208018817 पर आप मो को कॉल करें। ये ग्रेटर ओकलैंड में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में एक और एक जो मैसेज हमारे पास में आया है ये है, एक सेकेंड गुम हो गया मेरे का, हाँ, क्रिश मोइंग सर्विसेज 02111222617 क्रिश मोइंग सर्विसेज 02111222617। ये आपके लिए आपके घर पर अगर जो आपके यार्ड को क्लीनिंग करनी है या फिर आप ट्रिमिंग करवाना चाहते हैं लोन को ग्रास कटिंग के लिए आप क्रिश को कॉल करें 02111222617। ये भी ओकलैंड में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके पास में भी कोई बिजनेस डिटेल है जिसे आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो 5599 पर ज़रूर भेजें ताकि इस आवर पर जो एक फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में और लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल से पहुंचा सके तो मैसेज करें 5599 पर। हाउस मूविंग की आपको ज़रूरत है अगर जो आप सर्विसेज ढूंढ रहे हैं हाउस मूविंग के लिए तो धर्मेंद्र आचार्य बिल्कुल तैयार है ये करने के लिए आपके लिए। ये रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ में पंक्चुअल भी है तो आपको जिस समय ज़रूरत होगी उसी समय आकर ये अपने जो लेबर साथ में ट्रक लेकर हाजिर हो जाएंगे 02113798310211379831 पर आप धर्मेंद्र को कॉल कर सकते हैं इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग हाउसेस। तो ये सभी कुछ आपके साथ में है देसी बीज शाउट आउट में। आप भी घर से कोई वेंचर करते हैं वेजिटेबल्स बेचते हैं या फिर फ्लावर्स या फिर ट्यूशंस देते हैं घर से तो 5599 पर अपना जो डिटेल है हमारे पास में जल्दी से भेजिए।

0: passengers, your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win two return tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
1: Let's take a vacation.
0: And $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: ये भी एक प्रमोशन है जो आपके लिए हम पर चल रहा है और इसके लिए भी आप वीकडेज शामिल हो सकते हैं एंड सुनते रहिए ताकि आपको जैसे ही सुनाई दे जो आप क्यू टू कॉल है और ऐसे में सुनते ही रोवा पर जाइए और वन आवर का टाइम रहता है जहां पर रोवा पर आप जाकर एंटर हो सकते हैं. लेकिन अभी के लिए देसी बीच शाउट आउट में अगर जो घर पर कोई फंक्शन है इवेंट है और आप केटरिंग करवाना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा किचन बिल्कुल हाजिर है आपके लिए. यहां पर आप अमित को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 02129497905 पर आप अमित को कॉन्टेक्ट करें जो स्पेशलाइज करते हैं ढेर सारे स्नैक्स और फूड आइटम्स पे और पूरा का पूरा जो मेन्यू है आपके साथ में बैठकर ये डिस्कस कर सकते हैं. और आपको भी कुछ एडवर्टाइज़ करवाना है अभी जबकि गोल्डन आवर है, ये फ्री प्रमोशन जारी है, आपके पास में मौका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो 5599 इज़ द नंबर जहाँ पर आपने डिटेल्स आपको भेजने हैं.

0: हम पर अभी का साथ है और 12 तक आपका साथ देते रहेंगे। देसी बीज शॉर्ट आउट में गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड, अगर जो आपको प्लम्बिंग वर्क्स करवाना है घर पर 0221663379 पर आप कॉल करें, 0221663379 पर आप कॉल करें फॉर ऑल योर प्लम्बिंग वर्क्स। और इसके साथ में अगर जो आपको भी एडवर्टाइज करवाना है, प्रमोट करवाना है, 5599 इज द नंबर। एक नज़र देख लेते हैं वेदर रिपोर्ट पर, जहां पर मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है हेवी रेन एक्सपेक्ट किया जाता है वेस्टर्न एरियाज ऑफ साउथ आइलैंड फॉर सैटरडे, और साथ में सीवियर गेल्स और हाई वेव्स भी फोरकास्ट किया गया है। साथ ही साथ में संडे को कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में साउथ आइलैंड में स्नो भी हो सकती है। ये सभी कुछ है वीकेंड के लिए फॉर साउथ आइलैंड। तो ये आप अगर जो साउथ आइलैंड में हैं तो ऐसे वेदर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे, ये ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अगर जो ऐसा वेदर साउथ आइलैंड के लिए है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ आइलैंड में भी इसका असर कोल्ड टेम्परेचर्स के साथ में हमें महसूस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जबकि कुछ न्यूज़ आती है तो आपको बता देते हैं ताकि आप भी प्रिपेयर हो जाए वीकेंड में कैसा मौसम रहेगा। 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में फॉर ऑल योर होम बेस्ड बिजनेस वेंचर्स। अगर जो आप टेलरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर केटरिंग करते हैं तो आपसे हम सुनना चाहेंगे।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम, driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
7: Farmer's massive Red Dot sale ends Wednesday. There's now 60% off Red Dot clothing, 50% off Red Dot beauty, lingerie and men's underwear, 40% off Red Dot toys and 30% off Red Dot Lego. Farmer's Red Dot sale ends Wednesday. Conditions and exclusions apply.
8: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shiv Prasad, Kelston.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह।
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz.
1: Zed.

सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब। सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में एक और एक मैसेज आया है, हेवी ट्रेलर ईबीएस डायग्नोसिस। इसे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, अगर जो आपके हेवी ट्रेलर में, ट्रक एंड ट्रेलर में ये प्रॉब्लम है कि ईबीएस का कोई फंक्शन या मल फंक्शन है, तो आप अली को 02108928347 पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने किसी भी ट्रक एंड ट्रेलर के ईबीएस डायग्नोसिस को लेकर अली को कॉल करें 02108928347। याद रहे, अली वीकेंड्स पर ही आपको मिलेंगे। और अगर जो आपके ट्रक्स में, ट्रेलर में इशू है ईबीएस की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अली। इसके साथ में अगर जो आप भी कोई घर से कोई वेंचर है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं हमारे साथ में, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। जबकि 12 तक ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है। 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में 25 अवे फ्रॉम 12 और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स फैंस हैं आप सुन रहे होंगे या फिर लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे आज के मैच, जबकि कल सुबह 3 पर साउथ अफ्रीका और ऑल ब्लैक्स एक दूसरे का सामना करेंगी। एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच ये रहेगा, काफ़ी टफ भी रहेगा, तो कई लोग हैं जो सुबह सुबह जाकर इस गेम को भी देखेंगे। उससे पहले 11:30 के करीब 11:30 एट नाइट मैन यूनाइटेड साथ में हल भी खेलेंगी एक दूसरे के खिलाफ, जबकि EPL का ये एक मैच रहेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो सीज़न है आज से शुरू हो गया है, इसके साथ में ये भी होने वाला है, जबकि अगले वीक यूँ कहें कि लास्ट होगा राखी के लिए, जहाँ पर आप अपने भाई को जाकर राखी बांध सकते हैं। तो ऐसे में इस वीकेंड भी काफ़ी जगह पर जो बहनें हैं अपने भाई के घर पर जाएंगी, साथ में जाकर बड़े ही प्यार से राखी बांधेंगी, या फिर भाई आने वाले हैं इसकी भी तैयारी चल रही होगी आपके घर पर। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया कंपटीशन है रक्षाबंधन का, ये हमारे हम फेसबुक पेज पर जारी है, जहाँ पर $300 का कैश इनाम है, आप जीत सकते हैं। जो ड्रॉ है ये होगा फ्राइडे 28 अगस्त को। ऐसे में सिर्फ आपको क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए आपके रिश्ते में बिल्कुल आपके लिए सेंटिमेंटल है या फिर स्पेशल है, उसी चीज़ को लेकर फ़ोटो अपलोड करना है हमारे हम फेसबुक पेज पर, और इतना ही करके उसके साथ में नीचे अपने कमेंट सेक्शन में 2-3 लाइन लिखिए कि क्यों ये जो मेमोरी है आपके लिए स्पेशल है, या फिर क्यों ये ऑब्जेक्ट आपके लिए स्पेशल है, और अपने सिबलिंग को टेक करें, बस आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर दिया जाएगा। हु नोज़, शायद आप $300 इनाम के हकदार ठहरें,

डेसिबिस को आगे बढ़ाते हुए शेल्विन ने मैसेज किया है, ये ओकलैंड में, ग्रेटर ओकलैंड में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं। अगर जो आपको भी घर पर कुछ ठीक ठाक करवाना है तो आप शेल्विन को 022-131-7620 पर कॉल कर सकते हैं। शेल्विन आपके लिए फेंसिंग में काम कर सकते हैं, साथ में डेक्स वगैरह भी बनवा सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह की बाहर कोई रेनोवेशन काम करवाना है तो शेल्विन को 022-131-7620 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो BBC के हाथ लगी है, जो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, एक पेशेंट की मौत हो गई है, जबकि स्वीडन में एक हाई स्कूल में फ्राइडे लोकल टाइम उनके एक पेशेंट ने अटैक किया है एक स्वॉर्ड लेकर, और इस अटैक के बाद में एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है, साथ में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिस पर शायद और भी जानकारी आप आने वाले न्यूज़ पर सुन सकेंगे 8:12।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल है, तो ऐसे में आपकी बॉलीवुड की दुनिया की भी सैर करा दे। जबकि लेटेस्ट अपडेट्स जो आए हैं सामने, एकता कपूर प्रोड्यूस करने वाली हैं फोर्थ कमिंग मूवी, जिसे डायरेक्ट करेंगे साजिद खान। और इस मूवी की जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने बताया कि ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है जो जनवरी 2027 में रिलीज़ होगी। और बड़ी बात क्या है इस फिल्म की कि इससे डेब्यू करने वाले हैं यशवर्धन आहूजा, जो कि गोविंदा और सुनीता के बेटे हैं। इनकी फोर्थ कमिंग मूवी है और 2027 में इनकी जो बॉलीवुड डेब्यू है ये होने वाली है। और साजिद खान इज़ मेकिंग अ कमबैक विद द डायरेक्शन वेंचर, जबकि काफ़ी समय के बाद में इनको एक और एक फिल्म मिली है डायरेक्ट करने के लिए। एंड जबकि अभी हाल में आपने सुना होगा, काफ़ी बातें हो रही हैं सुनीता और साथ में गोविंदा को लेकर। यहाँ पर यशवर्धन अब आ रहे हैं 2027 में अपना डेब्यू करने के लिए।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: आज के लिए बस इतना ही. हमारी और आपकी मुलाकात कल एक बार फिर होगी 12 पर. लेकर आएंगे आपके लिए जस्ट चिल. लेकिन अभी यहाँ से निकलने का समय हुआ. आप आज के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्थी और साथ में गुनगुनाते रहें हम के साथ में. जी हाँ, आपका फेवरेट डायल 104.2 FM साथ में रोवा पर. मैं हूँ अभी, मेरा ढेर सारा प्यार, और आपसे कल मुलाकात होगी. डू टेक केयर, बाय.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Two Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, robovacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकि तुरुकी, ऑलटुगेदर ओकलैंड।
4: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
1: हम टाइम चेक Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with Logic.